ये विविध भारती का मुंबई केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने से कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर और जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना थी कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए और तत्काल परीक्षाएं आयोजित करना जरूरी था। उन्होंने कहा कि पेपर लीक एक छोटा मुद्दा नहीं है और ये लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए अत्यंत पीड़ादायक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित विभागों से फास्ट अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का यह मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों से जारी अपना अनशन समाप्त किया। वांगचुक की पंक्ति गीतांजलि आंगमू और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे थे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। श्री वांगचुक 28 जून से शिक्षा स्वास्थ्य में

0: सुधार और पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर अनशन कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यकर्ता श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। एक सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने ईश्वर से श्री वांगचुक के स्वस्थ बने रहने की प्रार्थना की है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, झंडेवालान और मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए तत्काल प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि पाकिस्तान से संचालित 480 सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक किया गया है। पुलिस के अनुसार ये हैंडल छात्रों और युवाओं को गुमराह करने के लिए अफवाहें और झूठी जानकारी फैला रहे थे। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा तथा खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसो डैन के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। अपनी प्रेस विज्ञप्ति में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और रोमानिया 7 दशकों से अधिक समय से घनिष्ठ और स्थायी मित्रता साझा करते आ रहे हैं, जो आपसी विश्वास, सम्मान और मजबूत जनसंबंधों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि भारत रोमानिया साझेदारी समय के साथ लगातार मजबूत हुई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि उन्होंने और राष्ट्रपति निकोसो डैन ने सार्थक और उपयोगी चर्चा की और हाल के वर्षों में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया विनिर्माण, औषधि, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, कृषि उत्पादन, उर्वरक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिजिटल सार्वजनिक सुविधा और AI जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत ने मानवाधिकारों का सम्मान करने और सभी के लिए अवसर सृजित करने वाली सुरक्षित, समावेशी और न्याय संगत खेल प्रणालियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल में खेल प्रशासन, खिलाड़ी कल्याण और संस्थागत क्षमता के विस्तार के लिए भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित किया। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का रंगारंग आगाज हो गया है। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहन ने किया। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत ने कल शाम हरारे में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

आज का चिंतन। महात्मा गांधी ने कहा है, भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम वर्तमान में क्या करते हैं। प्रस्तुत है वंदनवार, आइए सुने भक्ति संगीत।

विविध भारती से झरोखा में लीजिए सुनिए हमारे आज के शेष प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। श्रोताओं, अब से थोड़ी देर में यानी ठीक 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 259। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में सुनिएगा श्रृंखला घुंघरू की तरह। कलाकार हैं गायक और संगीतकार रविंद्र जैन। आप सुनेंगे आज इस श्रृंखला की चौथी कड़ी। इसी कार्यक्रम का पुनः प्रसारण हम करेंगे संध्या 6:45 पर। 7:00 आप सुनेंगे भूले बिसरे गीत। 7:30 पर हम है राही प्यार के ये कार्यक्रम होगा। 8:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम एक जय घोष। लेखक मिलिंद सबनीस, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज आप सुनेंगे इस श्रृंखला की 38वीं कड़ी। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है फिल्मकार मनोज कुमार पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।

फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश 11 बजे आप सुनेंगे रंग तरंग, 12 बजे होगा कार्यक्रम, 12:05 पर होगा कार्यक्रम यादों की महफिल, 1 बजे आप सुनेंगे सुरीला सफर, 2 बजे सुनिएगा वंदे मातरम एक जय घोष, लेखक मिलिंद सबनीस, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक, 2:30 पर आप सुनेंगे सदाबहार नगमे, 3 बजे सुनिएगा फोन इन प्रोग्राम हेलो सहेली, 4 बजे पिटारा में आप सुनेंगे गीतों भरी कहानी, कहानी जिंदगी की यही रीत है, आपको सुनवाएंगे लेखिका रिद्धि चोरड़िया, वाचन और संपादन नेहा शर्मा, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी, 5 बजे आप सुनेंगे छाया गीत, 5:30 पर होगा कार्यक्रम तराने नए पुराने, 6:05 से इसी कार्यक्रम का प्रसारण आप सुन सकेंगे, 6:35 पर संध्या रंजन कार्यक्रम आप सुनेंगे।

शाम 6:45 पर होगा कार्यक्रम संगीत सरिता श्रृंखला घुंघरू की तरह आप सुनेंगे। 7 बजे सुनिएगा फौजी साथियों के लिए कार्यक्रम जयमाला। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत आप सुनेंगे अनमोल यादें। फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर से जयंत पात्रेकर की बातचीत का 4th भाग आपको सुनवाएंगे प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। 8 बजे होगा कार्यक्रम हवा महल, सुनिएगा हास्य नाटिका बहादुरी, लेखक राधे श्याम अग्रवाल और निर्देशक बिजेंद्र मोहन। 9:00 बजे आप सुन सकेंगे कार्यक्रम आपके लिए।

रात 9:30 पर फिल्मकार मनोज कुमार पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। रात 10 सुनिएगा छाया गीत। और रात 10:30 पर होगा कार्यक्रम ढलती जाए रात। श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे झरोखा के अंतर्गत हमारे आज के शेष प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण।

कबंध नामक गंधर्व को दुर्वासा ऋषि के शाप से मुक्त करके अनुज सहित श्रीराम शबरी के आश्रम में पधारे। स्वयं प्रभु को अपनी कुटी में पाकर शबरी को मतंग ऋषि के वचन का स्मरण हो आया। उसकी प्रसन्नता की सीमा न रही। प्रेम और भक्ति के अतिरेक से उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। वाणी जैसे अवरुद्ध हो गई। दोनों भाइयों के चरण पखार कर शबरी ने उन्हें कंद मूल और फल अर्पित किए। अपने को नीच और मंदबुद्धि जानकर शबरी प्रभु की स्तुति करने में स्वयं को असमर्थ पाती है, किंतु उसके लिए तो मात्र भक्ति का ही संबल पर्याप्त है। जाति पाति, कुल धर्म, धन ऐश्वर्य तथा अन्य गुण होने पर भी भक्ति के बिना मनुष्य वैसा ही होता है

जैसे बिना जल वाला बादल। शबरी का असमंजस देख श्री राम उसे नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी प्रभु कथा में प्रेम, तीसरी अभिमान छोड़कर गुरु चरणों की सेवा और चौथी भक्ति है प्रभु का गुणगान। प्रभु में दृढ़ विश्वास और राम नाम का मंत्र जाप पांचवी भक्ति है। छठी है इंद्रियों का निग्रह, सातवीं संपूर्ण जगत को राममय जानना। भक्ति का आठवां रूप है जो मिल जाए उसमें संतोष करना, और नवीं भक्ति है कपट रहित व्यवहार, सरलता, इष्ट में भरोसा, निष्ठा तथा प्रत्येक अवस्था में हर्ष विशास से ऊपर उठ जाने की क्षमता।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का भाग 259।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: घुंघरू की तरह कार्यक्रम की इस श्रृंखला में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सिने जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार और गायक रविंद्र जैन से प्रसिद्ध लेखक और गीतकार राजेश जौहरी की बातचीत। प्रस्तुत है इस श्रृंखला की चौथी कड़ी।
1: प्यारे दोस्तों, तो आज हम फिर हाजिर हैं। दादा का एक बार सत्कार करता हूँ। नमस्कार दादा। हमने कई रागों के बारे में बातचीत की, आपने रागों के बारे में बहुत कुछ बताया और ऐसे रागों के बारे में बताया जिसमें आपने फिल्मी गाने निबद्ध किए और वो बहुत मकबूल हुए। आज उसी शास्त्रीयता को बरकरार रखते हुए, उसी सिलसिले को जारी रखते हुए, हम फिर शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय गीतों के बारे में, शास्त्रीयता के बारे में और फिल्मी गीतों के बारे में आपसे सुनेंगे।

0: दादा, जैसे कि हर संगीतकार के अपने कुछ पसंदीदा राग होते हैं, आपके शास्त्रीय संगीत की जो चादर है बहुत बड़ी है और उसमें न जाने कितने गीत समा गए बड़ी सुंदरता से, बड़े अच्छे ढंग से, तो आपके भी कुछ राग ऐसे होंगे मखसूस खास राग जो आपको बहुत पसंद होंगे और मौका मिलते ही आपने उन रागों पर या उसी एक राग पर गाने बनाए होंगे, उसके बारे में कोई विवरण दें।
1: यूँ तो हर राग बहुत अच्छा सजाया है हमारे बुजुर्गों ने
0: जी,
1: उनकी उन पर बलिहारी है जिन्होंने ये राग कंपोज किए, जिनको सोचा है।
0: क्या कहने,
1: हम लोग तो उसका इस्तेमाल भर करते हैं, वो भी मैंने आपसे जैसे अर्ज किया
0: जी
1: कि अपनी आत्मा अगर उसमें डाल दें तो कोई बात बन जाती है
0: जी।
1: वैसे राग वो जिसमें अनुराग हो, मसलन राग सबसे अच्छा राग है।
0: क्या कहने, वाह।
1: तो और हमारे शास्त्रों में कहा है कि रंजको जन चित्तानाम सराग कथितो बुध, जो चित्त का रंजन करे,
0: वाह।
1: उसकी परिभाषा ये है,
0: बहुत सुंदर।
1: ऐसे मुझे माइनर कॉर्ड्स के राग जो है ना रूट्स के पसंद है ज्यादा।
0: जैसे
1: बहुत सारे उसमें है, कई कई राग जो इस तरह के हैं ना जो माइनर नोट्स में है, भैरवी थाट के बहुत सारे राग हैं, भैरव थाट के अपने राग जो है ना
0: जी
1: बड़े अच्छे अच्छे हैं, उधर पूर्वी थाट के राग हैं, वो सब बड़े सुंदर सुंदर राग, उनकी उनमें एक अजीब उसमें एक आकर्षण है और एक ठहराव है
0: जी।
1: लेकिन अब फिल्मों में चूंकि हमें न्याय करना पड़ता है चरित्रों के साथ,
0: हाँ, सिचुएशंस की भी अपनी दरकार होती है, लेकिन आप कोई ऐसा गीत सुनाइए जो आपने शास्त्रीय संगीत पर आधारित किया हो और आपको पसंद हो।
1: आशा जी ने मेरे गीत गाया, वो आजकल बहुत लोग उसको सारे तमाम कलाकार गाना चाहते हैं।
0: वाह, जरूर।

0: अच्छा, शास्त्रीय संगीत का जिक्र चला है तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे फिल्म उद्योग में बहुत से कलाकार गा रहे हैं या अन्य स्थानों पर भी लोग गा रहे हैं, तो शास्त्रीय संगीत की जानकारी उनके लिए कितनी जरूरी है, इसकी सार्थकता पर थोड़ा सा आप बताएंगे?
1: यूं तो संगीत मनुष्य का स्वभाव है, स्वाभाविक गुण है उसका, लेकिन अगर संगीत का मर्म जानना है, रहस्य जानना है, तो शास्त्रीय संगीत के बिना कोई शॉर्टकट नहीं, दूसरा रास्ता नहीं है उसके लिए, क्योंकि ये गंधर्वों की विद्या है, देवों की विद्या है
0: जी,
1: मनुष्यों को कहाँ उपलब्ध हो सकती है, तभी होगी जब समर्पण भाव से उसको सीखें।
0: सही बात है। आजकल शास्त्रीय संगीत के बारे में लोगों का, गायकों का, कलाकारों का ये कहना है कि कोई जरूरत नहीं है शास्त्रीय संगीत सीखने की, और जैसा गाना मिला है सिनेमा के सिचुएशन पर गा दिया जाए, तो उन गानों की उत्पत्ति को आप कितना महत्व देते हैं जो बिना शास्त्रीय संगीत की जानकारी के बने बनाए और गाए जाते हैं?
1: मैं भी उसी
0: क्षेत्र में है,
1: उसी मतलब इंडस्ट्री को बिलोंग करता हूँ, और लेकिन ये जरूर कहूंगा कि उम्र जो है ना वो हर एक की अलग अलग है
0: जी,
1: है ना
0: जी,
1: किसी की 100 वर्ष है, किसी की 50 है, किसी की 20 है
0: जी जी,
1: है ना
0: जी जी,
1: तो इसी तरह गानों की भी आयु जो है ना वो इतनी सीमित हो जाती है कि वो आए गए कब, आए कब चले गए
0: पता ही नहीं चलता।
1: हाँ, बाद में ये लगता ही नहीं कि ये गाने भी हैं।
0: सही बात है, बिल्कुल सही बात,
1: गाना नहीं लगता, वो कुछ और ही लगता है।
0: कुछ देर के लिए लगता है, कोई तराना सा उठा फिर कहीं जाके दब गया।
1: हाँ ठीक है, बस मगर ये है कि जब प्रसिद्धि जिसको मिल जाती है, जो चीज पसंद लोगों ने कर ली है, लाखों लोग करोड़ों लोग जिसको गाते हैं
0: जी,
1: उसको खराब कहना भी मुश्किल है।
0: हाँ बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब ये कि शास्त्रीय संगीत की जानकारी नितांत आवश्यक है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: करना है, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। चलते चलते आज की इस कड़ी में कोई एक और गीत आपका ही निर्मित किया हुआ किसी शास्त्रीय राग पर,
1: मैं एक ऐसी रचना प्रस्तुत करना चाहता हूँ जिस रचना पर फिल्म बनाई गई। श्री राज कपूर जी ने ये गीत सुना और इस पर कहानी सोची, इसके आधार पे कहानी का ताना बना हुआ। ये गीत राग किरवानी में निबद्ध है। मैंने कोशिश की है कि राधा और मीरा दो चरित्र हैं इस गीत में, दोनों के साथ न्याय करूँ, साहित्यिक पक्ष भी इसका अच्छा बन पड़ा है।

0: घुंघरू की तरह इस श्रृंखला में आज आपने सिने जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार और गायक रविंद्र जैन से प्रसिद्ध लेखक और गीतकार राजेश जौहरी की बातचीत सुनी।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत इस कार्यक्रम के लिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: पारंपरिक भजन आप सुन रहे थे, वसंत देसाई की तर्ज थी, लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म थी तूफान और दिया।
1: एक गीतकार जिसके गानों के बिना न हमारी सुबह होती है न होती है शाम।
2: ये शाम मस्तानी।
1: एक गीतकार जिसने कुछ गाने खुद भी गाए।
2: दिल इंसान का एक
1: आनंद बख्शी की यादें बांटेंगे उनके बेटे राकेश आनंद बख्शी।
3: पार्टीशन हुआ ऑगस्ट में, अक्टूबर में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स आर्मी में हैं, तो उनका जो कोड नेम था वो आजाद था।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 28 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दू।
4: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची हैं, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
5: और आ गया।
6: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
7: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
8: सुनिए
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

मुकेश की आवाज़ में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत आपने सुना। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी पत्थर के सनम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। भूले बिसरे गीत श्रोताओ यहीं संपन्न हुआ।

रोटी कपड़ा और मकान, इस फिल्म का दो गाना आपने सुना लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाजों में। संतोष आनंद के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी पत्थर के सनम फिल्म का गीत आपने सुना। हरियाली और रास्ता इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें। हसरत जयपुरी के बोल।

हरियाली और आस्था इस फिल्म का गीत था, शंकर जय किशन का सर्वद किया हम मेरा ही प्यार के। ये कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। इस कार्यक्रम के कुछ और गीत आपको सुनवाएंगे बस एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का सर्वाधिक किया ये गीत आप सुन रहे थे।
1: कहीं दूर जब दिन ढल जाए,
2: मुकेश के गानों में है सादगी।
3: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल,
2: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
3: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार,
2: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
3: जाऊं कहां बताए दिल।
2: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
4: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
2: आज की मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
2: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
5: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
2: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
5: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
6: सखी सहेली।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के।

श्यामल मित्रा की तर्ज थी इंदिवर का लिखा गीत आपने सुना। आनंद आश्रम फिल्म का ये दो गाना था, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में। हमेरा ही प्यार के श्रोताओं, ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य
3: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए नया कानून लाने का वादा किया। आज मंत्रिमंडल की बैठक में कड़े प्रावधान लाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेपर लीक मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में अनशन समाप्त किया। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला अपना पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए।
5: पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया।
4: प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिए गए हैं।
5: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे, विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का यह मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी, कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
4: वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षाओं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है।
6: दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत में लोक परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक से जुड़े मामलों की जल्द सुनवाई के लिए एक विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय की अधिसूचना के अनुसार यह अदालत लोक परीक्षाएं, अनुचित साधनों के रोकथाम अधिनियम 2024 और उससे जुड़े अन्य मामलों की सुनवाई करेगी। यह अधिसूचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा में पेपर लीक के मामलों में शामिल लोगों को शीघ्र और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए देश भर में फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा के कुछ घंटों बात जारी की गई। रोहन, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों से जारी अनशन समाप्त कर दिया। एक रिपोर्ट।
7: इस दौरान सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। श्री वांगचुक ने कहा कि उन्होंने विभिन्न शर्तों पर लंबी बातचीत के बाद अनशन समाप्त किया है। उन्होंने सभी से किसी भी प्रकार की हिंसा न होने देने के लिए सतर्क रहने का आग्रह किया। श्री वांगचुक 28 जून से शिक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक मामले में जवाबदेही की मांग को लेकर अनशन पर थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
8: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
9: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकुशोर डान के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। एक रिपोर्ट।
2: प्रेस वक्तव्य में राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और रोमानिया के बीच 7 दशकों से ज्यादा से गहरा और मजबूत संबंध रहा है, जो आपसी भरोसे, सम्मान और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों पर टिकी है। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय

0: ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, कृषि उत्पादन, उर्वरक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। बुकारेस्ट रोमानिया से शुभाश्री महापात्रा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बुखारेस्ट के विक्टोरिया पैलेस में रोमानिया के प्रधानमंत्री इली बोलोजान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे रोमानिया के राष्ट्रपति के साथ भारत रोमानिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सचिवों की नियुक्ति की है। वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। टीके अनिल कुमार स्कूली शिक्षा और साक्षरता सचिव होंगे। भारत ने 350 किलोग्राम के थ्रस्ट श्रेणी का अपना पहला स्वदेशी डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के गैस टर्बाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान GTRE ने विकसित किया है। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्रालय ने कहा कि DRDO के डिजाइन पर आधारित इस जटिल प्रणाली की डिलीवरी भारतीय रक्षा उद्योग की बढ़ती तकनीकी क्षमताओं को दर्शाती है। ये वर्षों की सटीक इंजीनियरिंग, उन्नत विनिर्माण और भारत के वैज्ञानिक और औद्योगिक समुदाय के बीच घनिष्ठ साझेदारी का परिणाम है। मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि जेट इंजन प्रौद्योगिकी को विश्व के सबसे परिष्कृत इंजीनियरिंग विषयों में से एक माना जाता है। इस इंजन को बुधवार को आजाद इंजीनियरिंग द्वारा सफलतापूर्वक विकसित किया गया और GTRI को सौंपा गया। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: DRDO ने आज ओडिशा तट के निकट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली कुशा मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO और संबंधित पक्षों को बधाई दी है। ओडिशा के पवित्र तटीय शहर पुरी में आज विश्व प्रसिद्ध बहुधा यात्रा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की श्री गुंडिचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक की वापसी यात्रा कराई जाएगी।
3: पुरी के पवित्र शहर गहरी भक्ति और आध्यात्मिक उत्साह से भर गया है। लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की घर वापसी की बाहुड़ा यात्रा को देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पारंपरिक वाद्य यंत्र की ताल के बीच देवताओं की पहंडी जुलूस से समारोह पूर्वक ले जाया जाएगा और उनके शानदार रथों पर विराजमान किया जाएगा। यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ मौसीमा मंदिर में रुकेगा, जहाँ भगवान को पोड़ो पीठा का भोग लगाया जाएगा। प्रकाश समाचार।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। इस बीच गुजरात में पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ स्कॉटलैंड के ग्लासगो में एक भव्य और रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हुआ। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग ले रही हैं। ध्वजवाहक मीराबाई चानू और औपचारिक मशालवाहक लवलीना बोरगोहेन के नेतृत्व में भारतीय दल ने तिरंगे लहराते हुए स्पोर्ट्स एरेना में प्रवेश किया। ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद विशाल। पेपर लीक की गंभीर समस्या से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा आज के अधिकांश अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री के शब्दों को दिया है, पेपर लीक पर कड़ा कानून बनेगा, आज कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा।

0: मसौदा। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन समाप्त करने को भी अखबारों ने सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, वांगचुक ने आधी रात तोड़ा अनशन, केंद्रीय मंत्रियों ने जूस पिलाकर तोड़वाया अनशन। वहीं आंदोलनकारी छात्रों और सरकार के बीच बातचीत पर नवभारत टाइम्स का कहना है, वेन्यू पर अटकी सरकार से वार्ता। अमर उजाला की सुर्खी है, यूपीएससी की तरह एनटीए परीक्षाएं होंगी फुल प्रूफ, शुरू हुए बड़े बदलाव, गड़बड़ी पर नपेंगे अधिकारी, ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम की भी होगी समीक्षा। परीक्षा सुधार जरूरी शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है, प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ छात्रों का आंदोलन अपनी जगह है, लेकिन परीक्षा सुधार के लिए जो कदम उठाए गए हैं उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा को साकार करने की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ परीक्षा तंत्र से जुड़े लोगों की भी होनी चाहिए। 2 साल के अंतर की शर्त लगाकर नहीं रोक सकते मातृत्व अवकाश, सरकारी कर्मियों के मातृत्व अवकाश पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की टिप्पणी दैनिक जागरण में है। न्यायालय ने कहा, पहले और दूसरे बच्चे के बीच 2 वर्ष का अंतर होने की शर्त लगाकर मातृत्व अवकाश देने से नहीं किया जा सकता इनकार। आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने वालों को नतीजे भुगतने होंगे, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर का ये बयान जनसत्ता में है। फिलीपींस के मनीला में 33वीं आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठक में विदेश मंत्री ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग सुरक्षित और निर्बाध से खुले रहने चाहिए।
1: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए नया कानून लाने का वादा किया। आज मंत्रिमंडल की बैठक में कड़े प्रावधान लाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेपर लीक मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में अनशन समाप्त किया। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला अपना पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।
3: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम, एक जयघोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 38वीं कड़ी।

0: वंदे मातरम नामक साप्ताहिक पत्रिका का बड़ा योगदान रहा इस क्रांति में। महाराष्ट्र की और देश की स्वाधीनता की लड़ाई की दृष्टि से समाचार पत्रों के इतिहास में जो स्थान लोकमान्य तिलक के पत्र केसरी का था, वही स्थान श्री अरविंद और बिपिन चंद्र पाल के वंदे मातरम पत्रिका का रहा। भारत के राष्ट्रवादी समाचार पत्रों में एक महत्वपूर्ण समाचार पत्र बन गया वंदे मातरम। लेखनी भी कई बार तलवार से अधिक धारदार बन जाती है और क्रांति कर दिखाती है।
1: 1906 से 1908 के इस काल में इस समाचार पत्र ने जनमानस को सींचा, लोगों के मन को तैयार किया। इसका श्रेय जाता है श्री अरविंद को। इस अंग्रेजी दैनिक ने युवाओं के मन में तेज उत्पन्न किया। कांग्रेस में गरम दल और नरम दल ऐसे दो गुट हो गए और दिसंबर 1907 का सूरत अधिवेशन भंग हो गया। श्री अरविंद ने 12 अप्रैल 1908 के वंदे मातरम के अंक में लिखा था,
2: विदेशी सरकार के पास याचना विनती करके स्वतंत्रता खरीदी नहीं जा सकती। उसके लिए नौकरशाही से युद्ध करने और रक्त बहाने की तैयारी चाहिए।
0: वंदे मातरम समाचार पत्र के कारण बंगाल में आंदोलन को मजबूती मिल रही थी। उसी दौरान एक सभा में वंदे मातरम इस गीत का उल्लेख करते हुए गुरुदास बैनर्जी ने बंकिम चंद्र को ऋषि बंकिम कहकर संबोधित किया। इस सभा में वंदे मातरम समाचार पत्र से जुड़े हेमेंद्रनाथ घोष उपस्थित थे। गुरुदास बैनर्जी उच्च कोटि के कानूनविद, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उदार शिक्षा के समर्थक तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के रूप में प्रसिद्ध थे। न्यायमूर्ति रानड़े को महाराष्ट्र में जो सम्मान प्राप्त था, वही सम्मान गुरुदास जी को बंगाल में प्राप्त था। सर गुरुदास बैनर्जी जैसे बंकिम चंद्र के समकालीन व्यक्ति और नेता द्वारा बंकिम चंद्र जी का ऋषि बंकिम के रूप में गौरवान्वित किया जाना उनके लिए एक नई बात थी। उन्होंने यह समाचार श्री अरविंद को दिया और तब से श्री अरविंद भी बंकिम चंद्र जी का उल्लेख करते समय ऋषि बंकिम ही कहने लगे। बंकिम चंद्र जी का यह ऋषित्व श्री अरविंद ने ही लोगों के सामने लाया।
1: वंदे मातरम नाम के समाचार पत्र भारत की अन्य भाषाओं में भी निकलने लगे। इसी दौरान पंजाब में पंजाबी भाषा में इसी नाम का समाचार पत्र शुरू हुआ। जनवरी 1908 में हरि रघुनाथ भागवत ने वंदे मातरम नामक पुणे से मराठी समाचार पत्र शुरू किया। इसमें मुख्य रूप से श्री अरविंद जी के वंदे मातरम के चुनिंदा लेखों का मराठी अनुवाद प्रकाशित होता था। श्री अरविंद के विचारों और लेखन का प्रचार करने के लिए ही ये समाचार पत्र चलाया गया था, परंतु आगे चलकर सरकारी दमन के कारण 1909 के मध्य में ये समाचार पत्र बंद करना पड़ा। मादाम कामा और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 10 सितंबर 1909 को यूरोप से वंदे मातरम इसी नाम से समाचार पत्र शुरू किया। उसके संपादक थे लाला हरदयाल। इस मासिक पत्रिका का पहला अंक जिनेवा और रॉटरडम से प्रकाशित किया गया। इसका मूल्य स्वैच्छिक था।

0: इस पत्रिका के पहले पृष्ठ पर वंदे मातरम ये शब्द समाचार पत्र के नाम के रूप में बड़े अक्षरों में थे और उसके नीचे दो छाया चित्र थे। उनमें से एक था मादाम कामा राष्ट्र ध्वज फहराते हुए और दूसरा तलवार उठाकर खड़ी भारत माता। भारत माता के छाया चित्र के नीचे गीता के दूसरे अध्याय का 33वां श्लोक प्रकाशित किया गया था। अथ चेत्व मिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिंच हित्वा पापं वाप्स्यसि। उसी प्रकार उसके संपादकीय के ऊपर भगवान बुद्ध का यह बोध वाक्य था, हे आनंद, तू ही तेरा दीपक है, बाहर आश्रय मत ढूंढ, अपने परिश्रम से ही निर्वाण प्राप्त कर। इस समाचार पत्र के वंदे मातरम शब्दों के नीचे लिखा था भारतीय संस्कृति का मुखपत्र।
1: लाला हरदयाल ने स्वतंत्र रूप से 1914 में स्विट्जरलैंड से वंदे मातरम नाम का अंग्रेजी समाचार पत्र शुरू किया। 1920 में दिल्ली से लाला लाजपत राय ने हिंदी भाषा में वंदे मातरम पत्र शुरू किया। अमेरिका में बसे भारतीयों ने भारत की स्वतंत्रता के लिए गदर पार्टी के माध्यम से आंदोलन का समर्थन किया। गदर पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह भकना थे। वंदे मातरम ही गदर पार्टी का राष्ट्रगीत था। गदर के क्रांतिकारी करतार सिंह और विष्णु गणेश पिंगले वंदे मातरम कहते हुए फांसी पर चढ़े। सैन फ्रांसिस्को में रहने वाले भारतीयों ने भारत माता संघ शुरू किया और उसके मुखपत्र के रूप में वंदे मातरम खालसा नाम की पत्रिका शुरू की।
0: कुल मिलाकर बंगाल के विभाजन के कारण जो आंदोलन उभरा उससे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक गति प्राप्त हुई। इसी आंदोलन के कारण वंदे मातरम यह युद्ध मंत्र भारतीय जनता को मिला और उसका प्रभाव आगे उभरे प्रत्येक आंदोलन में बढ़ता ही गया। वंदे मातरम ये शब्द मानो यहां के प्रत्येक भारतीय के जीवन का मूल मंत्र बन गए।

आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भ्रम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

मातरम एक जय घोष। अभी आप सुन रहे थे इस लघु रूपक श्रृंखला की 38वीं कड़ी, मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर ममता सिंह, सहभागी कलाकार यूनुस खान, तकनीकी सहयोग किरण बंग, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे और प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

0: बेला शिंदे की आवाज़ में जोधा अकबर फिल्म से ये भक्ति रचना आप सुन रहे थे। जावेद अख्तर के बोल थे, ए आर रहमान का संगीत था। श्रोता विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। चित्रलोक कार्यक्रम के कुछ और गीत आपको सुनवाएंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।
1: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत अंदाजे 60 कोटी लोक 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या मोफत उपचारांसाठी पात्र ठरले आहेत. आतापर्यंत 12 कोटींहून अधिक मोफत उपचार देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे गरीब कुटुंबांच्या वैद्यकीय खर्चात अंदाजे 2 लाख कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. आजच आयुष्मान ॲप डाउनलोड करा आणि आयुष्मान कार्ड बनवा. अधिक माहितीसाठी 1455 वर कॉल करा.
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है. कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था. कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है. पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना. मैंने कहा ओ ये सही है बेटा.
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in.
3: हर घर सूर्य घर.

0: मोहित चौहान की आवाज में इरशाद कामिल की रचना आपने सुनी। ए आर रहमान का संगीत था, फिल्म थी तमाशा।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
3: और आ गया।
2: एक और आ गया।
4: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मिया, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों के। 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: सुनिए
0: विविध भारती से, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। श्रोताओं, सिनेमा जगत के जाने माने अभिनेता, निर्माता और निर्देशक मनोज कुमार की आज जन्म जयंती है, और जिन्हें हम जिनका मूल नाम कह सकते हैं कि हरे कृष्ण गिरी गोस्वामी हैं। उनका जन्म 24 जुलाई 1937 को एबटाबाद में हुआ। 1957 में आई फिल्म फैशन से मनोज कुमार ने अपने अभिनय की शुरुआत की। मनोज कुमार वैसे तो तमाम फिल्मों में नजर आए, लेकिन कुमार

राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत फिल्मों में अभिनय के लिए खास तौर पर जाने गए और इसी कारण उन्हें भारत कुमार के नाम से भी जाना जाता है। 1965 में आई फिल्म शहीद में उन्होंने भगत सिंह की भूमिका निभाई, जिसने उन्हें एक देशभक्त अभिनेता के रूप में स्थापित कर दिया। 1967 में फिल्म उपकार से निर्देशन की शुरुआत की उन्होंने और भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। फिल्म पूरब और पश्चिम, रोटी कपड़ा और मकान और क्रांति उनकी बहुत लोकप्रिय फिल्मों में शामिल हैं। अभिनेत्री माला सिन्हा, साधना, आशा पारेख और तमाम ऐसी अभिनेत्रियां थीं जिनके साथ उन्होंने अभिनय किया और इनकी जोड़ी को भी खूब पसंद किया गया। वैसे मनोज कुमार संजीदा अभिनय के लिए भी पहचाने जाते हैं। उनकी फिल्मों की अगर बात करें तो फिल्म फैशन, सहारा, हनीमून, कांच की गुड़िया, पिया मिलन की आस, रेशमी रुमाल, डॉक्टर विद्या, हरियाली और रास्ता, शहीद और अगर थ्रिलर फिल्म की बात करें तो फिल्म गुमनाम, इसके बाद फिल्म नीलकमल, ऐसी तमाम चर्चित फिल्मों में मनोज कुमार ने अभिनय किया। शशि गोस्वामी उनकी शरीके हयात हैं। हम अभिनेता मनोज कुमार की पुण्य स्मृति को नमन करते हैं।

0: नवाब वजीद अली शाह अख्तर की ये रचना आप सुन रहे थे जानेसार फिल्म से, उस्ताद शफाकत अली खां और शेख घोषाल की आवाज़ों में, मुजफ्फर अली और उस्ताद शफाकत अली खां की तर्ज थी। इस समय विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। इस कार्यक्रम के कुछ और नगमे आपको सुनवाएंगे बस एक छोटी सी ब्रेक के बाद, थोड़ा सा।
1: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
2: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
1: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
2: सच?
1: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
2: समझ गया।
3: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
4: फंसा। अनजान ऐप से बचें।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: विविध भारती का ये कार्यक्रम है चित्रलोक।

सनम प्रिय, इस फिल्म का गीत आपने सुना अनिरुद्ध भोला और अरिजीत सिंह के सुरों में। मिथुन की रचना थी और तर्ज भी थी मिथुन की।

फिल्म दंगल का गीत आपने सुना, जानिता गांधी की आवाज़ थी, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल थे, प्रीतम का संगीत था। विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं श्वराव चित्रलोक कार्यक्रम। आज फिल्म जगत के जाने माने निर्माता, निर्देशक और अभिनेता उत्तम कुमार की पुण्यतिथि है। श्रोताओ, उनका असल नाम अरुण कुमार चट्टोपाध्याय था। उत्तम कुमार का जन्म कलकत्ता में हुआ। फिल्मों में आने से पहले वो पोर्ट ट्रस्ट के काम को किया करते थे और 1948 में आई फिल्म दृष्टिदान में सपोर्टिंग रोल से उन्होंने डेब्यू किया। फिल्म बासु परिवार उनकी पहली हिट फिल्म मानी जाती है और अभिनेत्री सुचित्रा सेन की अगर बात करें तो उनके साथ उन्होंने कई एक फिल्में की और उनके करियर में कह सकते हैं कि फिर एक नया मोड़ आया। सुचित्रा सेन की अगर बात करें तो उनकी जोड़ी उत्तम कुमार के साथ बेहद सफल और लोकप्रिय जोड़ी बांग्ला सिनेमा में मानी जाती है। सत्यजीत रे की फिल्म चिड़ियाखाना में उत्कृष्ट अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी उत्तम कुमार को मिला। वो एक सफल निर्माता, निर्देशक और पार्श्व गायक भी थे। 50 से 70 यानी कि 2 दशकों से ज़्यादा एक सफल अभिनेता के तौर पर स्थापित रहे। उनकी हिंदी फिल्म अमानुष खूब पसंद की गई। कुछ एक और हिंदी फिल्मों में भी उत्तम कुमार नजर आए थे और भारतीय सिनेमा का ये चमकता सितारा 24 जुलाई 1980 को इस दुनिया फानी से वो विदा हुए। उनकी कुछ एक अगर फिल्मों की बात करें तो सागरिका, एक थी रात, हारानो सूर, पाथे, हेलो देर, इंद्राणी, माया मृग, सप्त दी, बिपाशा, भ्रांति बिलाश, दयानिया, कोकोने मेघ, ये सारी उनकी कुछ अलग अलग फिल्में थीं।

सोनू निगम और श्रेया घोषाल को आप सुन रहे थे फिल्म वजीर में। विधु विनोद चोपड़ा का लिखा यह गीत था, शांतनु मोहितरा की तर्ज थी। श्रोताओं, विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। एक छोटे से अंतराल के बाद हाजिर होते हैं।

प्रीतम का सर्वद किया ये गीत आपने सुना, इरशाद कामिल के बोलते उस्ताद राशिद खान की आवाज थी, फिल्म थी जफी मेट। तुम्हारी सुलु इस फिल्म का गीत है, गुरु रंधावा की आवाज। गीत और संगीत भी गुरु रंधावा के।

0: तुम्हारी सुलु इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे चित्रलोक कार्यक्रम। इसी गीत के साथ ही श्रोताओ संपन्न होता है डीजे इजाजत संगीता श्रीवास्तव को नमस्कार।
1: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत अंदाजे 60 कोटी लोक 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या मोफत उपचारांसाठी पात्र ठरले आहेत. आतापर्यंत 12 कोटींहून अधिक मोफत उपचार देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे गरीब कुटुंबांच्या वैद्यकीय खर्चात अंदाजे 2 लाख कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. आजच आयुष्मान ऍप डाउनलोड करा आणि आयुष्मान कार्ड बनवा. अधिक माहितीसाठी 1455 वर कॉल करा.
1: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो.
2: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ. एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी. पेमेंट लिंक भी भेजा है.
1: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है. धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं.
2: सच?
1: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो. सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें.
2: समझ गया.
3: गोल्डी, ये क्या ज्यादती है भाई? भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है? खैर, बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी ने.
4: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर. विविध भारती, आपका जीवन संगीत.

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बाती दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित निर्माता, निर्देशक, अभिनेता और लेखक मनोज कुमार की।

मनोज कुमार का जन्म 24 जुलाई 1937 को एबटाबाद में हुआ था। ये जगह अब पाकिस्तान में है। उनका वास्तविक नाम है हरि कृष्ण गोस्वामी। जब वो 10 बरस के थे तो देश का बंटवारा हो गया और पूरा परिवार दिल्ली में आ गया और रिफ्यूजीज यानी शरणार्थियों के एक कैंप में पुराने राजेंद्र नगर दिल्ली में रहने लगा। मनोज कुमार ने अपनी शिक्षा दीक्षा दिल्ली में ही पूरी की। बचपन से ही दिलीप कुमार उनके पसंदीदा अभिनेता थे। वो दिलीप कुमार की कॉपी किया करते थे अपने कॉलेज के दिनों में। शुरुआती दिनों में मनोज कुमार ने कुछ छोटे मोटे काम किए, यहां तक कि उन्होंने सिलाई मशीन के सेल्समैन के तौर पर भी कुछ दिन काम किया। बाद में अभिनेता बनने का सपना लेकर मनोज कुमार मुंबई आ गए और यहां उन्होंने कुछ छोटी फिल्मों से की अपनी शुरुआत, जैसे सन 1957 में आई थी फिल्म फैशन।

तकरीबन 5 बरस बाद विजय भट्ट की फिल्म हरियाली और रास्ता के जरिए मनोज कुमार को मिली अपनी पहली बड़ी कामयाबी। इस फिल्म में उनकी नायिका थी माला सिन्हा।

सन 1965 में ही विचार आया शहीद भगत सिंह पर फिल्म बनाने का। फिल्म शहीद का निर्माण बहुत सारे संघर्षों से घिर गया था, लेकिन मनोज कुमार ने ठान लिया था कि ये फिल्म तो बनकर रहेगी और शहीद भगत सिंह के जीवन पर सबसे प्रामाणिक फिल्म यही है जिसमें मनोज कुमार शामिल थे। इस फिल्म में प्रेम चोपड़ा भी नजर आए। फिल्म के गीतकार और संगीतकार थे प्रेम धवन।

मनोज कुमार के करियर के दो अलग अलग पहलू हैं। एक वो पहलू है जहां वो रूमानी नायक के तौर पर कई फिल्मों में नजर आए, और दूसरा पहलू है भारत कुमार वाला पहलू, जहां उन्होंने देशभक्ति और सरोकार वाला सिनेमा बनाया। तो चलिए पहले बतौर चॉकलेटी हीरो मनोज कुमार की फिल्मों की कुछ झलक यानी कुछ गाने सुन लिए जाएं। फिल्म पत्थर के सनम।

जब फिल्म शहीद को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को दिखाया गया, तब ये फिल्म उन्हें बहुत पसंद आई और उन्होंने मनोज कुमार की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनसे कहा, क्या मेरी नारी जय जवान जय किसान पर फिल्म नहीं बन सकती? मनोज कुमार ने दिल्ली से लौटते हुए कुछ रजिस्टर खरीदे और कुछ नए पेन। दिल्ली से मुंबई तक के सफर में फिल्म उपकार की कहानी तैयार हो चुकी थी और इस तरह सन 1967 में आई रुपहले पर्दे की एक नायाब बेमिसाल फिल्म उपकार।

उपकार के इस गाने की एक दिलचस्प कहानी है। गुलशन बावरा रेलवे में क्लर्क हुआ करते थे। रेल गोदाम में पंजाब से आती थी गेहूं की बोरियां। जब गेहूं की इतनी सारी बोरियां उतरा करती तो गुलशन बावरा के कवि मन में एक पंक्ति कौन थी, मेरे देश की धरती सोना उगले। बरसों बरस ये पंक्ति उनकी डायरी में बनी रही। बाद में मनोज कुमार ने इसे फिल्म उपकार में शामिल किया। सन 1970 मनोज कुमार अपनी दूसरी फिल्म लेकर आए, पूरब और पश्चिम। ये फिल्म परंपरा और पश्चिमी संस्कृति के टकराव की कहानी थी। इस फिल्म की चारों तरफ बड़ी तारीफ हुई और ये गाना जैसे भारत के गौरव का गान बन गया।

सन 1972 में मनोज कुमार नजर आए फिल्म बेईमान में। इसी साल मनोज कुमार ने अपने प्रोडक्शन से अगली फिल्म प्रस्तुत की जिसका नाम था शोर।

फिल्म शूर के गाने बेहद मकबूल हुए। सन 1974 मनोज कुमार ने एक ऐसी फिल्म बनाई, आजादी के बाद बनते हुए भारत के सपनों से थोड़े से मोहभंग की कहानी थी। एक ऐसी फिल्म जिसने बताया कि हम सब अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन देश में हैं कुछ समस्याएं जिन्हें निपटाना जरूरी है। यह फिल्म थी रोटी कपड़ा और मकान। फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में मनोज कुमार के साथ नजर आई जीना तमान।

इसके बाद मनोज कुमार नजर आए फिल्म 10 नंबरी में। मनोज कुमार दिलीप कुमार के हमेशा से जबरदस्त फैन रहे हैं। दिलीप कुमार के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका उन्हें मिला सन 1981 में अपनी फिल्म क्रांति के जरिए।

क्रांति के बाद मनोज कुमार की फिल्में ज्यादा नहीं चली। धीरे धीरे मनोज कुमार नेपथ्य में चले जाते रहे, लेकिन मनोज कुमार के चाहने वाले कायम रहे। आज भी उनके मैनरिज्म को, उनकी अदाओं को, रुपहले पर्दे पर उनकी मौजूदगी को लोग बहुत याद करते हैं। आइए सन 1970 में आई फिल्म पहचान का ये गाना सुने, जिसे हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि और गीतकार नीरज ने लिखा।

0: डरता हूँ।
1: सन 1989 में मनोज कुमार ने बनाई फिल्म क्लर्क और सन 1995 में मैदाने जंग। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और लेखक मनोज कुमार पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
2: आज के फनकार।

पूना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपने पन का काम।

0: विविध भारती के स्टूडियो नंबर 1 से मैं आपका दोस्त यूनुस खान आप सभी को नमस्कार कर रहा हूँ। मुंबई में बारिश की झड़ी लगी है और जिस तरह की बारिश हो रही है उसके बीच विविध भारती के स्टूडियो से हम अपने श्रोताओं से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हेलो फरमाइश कार्यक्रम की खासियत ये है कि पूरे देश के बल्कि विदेश के श्रोता भी हमसे जुड़ते हैं और कई ऐसे श्रोता हैं जो लंबे समय से कॉल करने की कोशिश कर रहे होते हैं और बड़ी मुश्किल से उनका कॉल लगता है। ऐसा है विविध भारती के इस फोन इन कार्यक्रम से आपका प्यार। तो चलिए देखते हैं कि आज पहला कॉल किसका है। हेलो फरमाइश
1: सर। नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: सर मैं अब्दुल हमीद छेपा बोल रहा हूँ, जोधपुर राजस्थान से।
0: बताइए जी क्या करते हैं हमीद भाई?
1: सर मैं बैंगल्स का काम करता हूँ सर, चूड़ी पे प्रिंट का काम है मेरा सर।
0: तो ये खानदानी काम है?
1: सर ये खानदानी काम है सर, खानदानी काम सर हमारा कपड़ों पे ब्लॉक प्रिंटिंग का है।
0: ये तो मुझे पता है कि जो छिपा समुदाय के लोग होते हैं ये ब्लॉक प्रिंटिंग के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं हिंदुस्तान में, है ना?
1: जी सर।
0: कितने सालों से ये काम चला आ रहा है और देश के किन किन राज्यों में आप लोग मौजूद हैं?
1: कई पीढ़ियों से हमारा ये काम चला आ रहा है सर, ये हमारा खानदानी काम है ब्लॉक प्रिंटिंग का।
0: जी
1: राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कई राज्यों में ये छिपा समाज निवास करता है सर, ब्लॉक प्रिंटिंग का कार्य करता है।
0: आपने क्यों छोड़ दिया ये काम?
1: सर मैंने सर काम छोड़ा नहीं सर, मेरा शुरू से रुझान दूसरे काम में था और मैं चूड़ी के काम में मेरा रुझान लग गया और मैं चूड़ी पे प्रिंटिंग का काम करता हूँ सर। जो राजस्थानी चूड़े बनते हैं हमारे, बड़ी से छोटी, छोटी छोटी चूड़े बनते हैं, उन पे प्रिंटिंग का काम होता है सर।
0: ये लाख की चूड़ियाँ हैं या कांच की हैं?
1: ये सर कांच की चूड़ी भी होती है और प्लास्टिक की चूड़ी भी होती है सर।
0: अच्छा अच्छा, राजस्थान में तो लाख का काम बहुत ज्यादा होता है।
1: राजस्थान में सर लाख का काम जयपुर में ज्यादा होता है सर।
0: अच्छा अच्छा,
1: और हमारे राजस्थान की परंपरागत चूड़ी है ढालू मूठी जिनको बोलते हैं।
0: जी जी।
1: यहाँ की महिलाएं पहनती हैं, बहुत आकर्षक लगते हैं सर पहने हुए मूठी।
0: बहुत सारे चटक रंग होते हैं, है ना?
1: और राजस्थान तो सर चटक रंगों के लिए प्रसिद्ध है सर।
0: बिल्कुल, मुझे बहुत सारी जानकारियां मिल रही हैं आपसे बात करते हुए। मुझे ये बताइए कि जब ब्लॉक प्रिंटिंग का काम होता था तो चूड़ियों पर पेंट करने का काम आपने खुद सीखा, इजाद किया, क्या मामला है?
1: सर चूड़ी पर पेंटिंग काम करने का काम मैंने खुद ने सीखा है सर। पहले मैं कहीं जाता था, वहाँ चूड़ी काटने का काम होता था, वहाँ पर उसने हमें बताया इस पे कुछ काम करो, तो मैंने अपने मर्जी से काम करके बताया जो आज तक चल रहा है अल्लाह के करम से।
0: क्या बात है, तो ये बहुत ही अनूठा काम है और कलाकार को अपनी कला से बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है। दुनिया के किन किन देशों तक आपका काम पहुँच चुका है?
1: हिंदुस्तान में सर माल जाता है सर हमारा।
0: अच्छा।
1: मैं लेबर हूँ, मजदूरी करता हूँ, प्रिंटिंग का काम करता हूँ सर, और हमारे काम को गति देता है विविध भारती।
0: किस तरह से, ये भी बताइए
1: सर। विविध भारती में इतने मजेदार कार्यक्रम आते हैं, इतने मधुर गीत बजते हैं, इतनी अच्छी जानकारियाँ मिलती है, पूरे देश से हमें मिलने का मौका मिलता है सर एक ही प्लेटफॉर्म पर, जो ये काम सुचारू रूप से विविध भारती करती है।
0: क्या बात है, अब बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: सर मुझे फिल्म राजकुमार का गाना सुनना है, तुमने पुकारा और हम चले आए।
0: क्या बात है, सुनते हैं ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ सर नमस्कार।
0: नमस्कार जी,
1: मैं बढ़ापुर बिजनौर उत्तर प्रदेश से एम ताहिर बोल रहा हूँ सर।
0: हाँ जी ताहिर जी, कैसे हैं आप?
1: बस सर दुआएं हैं, नजर इनायत है, सब कुछ मस्त है, अल्लाह का करम है सर।
0: क्या बात है, आपके इलाके के बारे में बताइए।
1: सर इलाके के बारे में, ये एक सर पहाड़ी इलाका है सर ये हमारा बढ़ापुर, और चारों तरफ से यहाँ पे नदियाँ हैं, उसके ऊपर एक टापू पे बसा हुआ जैसा है।
0: क्या बात है, तो चारों तरफ कौन कौन सी नदियाँ हैं?
1: ये सर यहाँ पे खो है, वो नक्टा नदी कहलाती है, गुला नदी कहलाती है, और यहाँ से कुछ ही दूर, यहाँ से 15-20 किलोमीटर पे पर्वतीय ये हिस्सा है।
0: क्या बात है, आप क्या काम करते हैं?
1: मैं सर एक शॉपकीपर हूँ आफ्टर ग्रेजुएशन।
0: ओके, और रेडियो से विविध भारती से जो नाता है आपका, उसके बारे में बताइए।
1: वो सर आप लोगों की पेशकश से काफी पुराना नाता है, जो बात रेडियो में है वो जितने भी प्रोग्राम और है, यानी कि मनोरंजन का साधन है, वो रेडियो के मुकाबले नहीं है सर।
0: क्या बात है, ये जानकर बहुत अच्छा लगा,
1: खास करके आपकी पेशकश।
0: जी शुक्रिया,
1: मैं आपसे पहली बार बात हुई लेकिन कार्यक्रम आपके मिस नहीं करता हूँ, आपकी जो पेश करने का अंदाज ही आकाशवाणी नजीबाबाद है सर हमारे पास में, यहाँ पे 20-30 किलोमीटर दूर में।
0: जी जी
1: जी हाँ, उसके पास से ही हूँ मैं, 20-30 किलोमीटर दूर है हमारे यहाँ से, हमारे नगर पंचायत से।
0: अच्छा, इन दिनों के कौन से प्रोग्राम है जो आपको याद रह गए हैं?
1: विविध भारती के सारे ज्ञानवर्धक कार्यक्रम जितने भी होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं, और हेलो फरमाइश तो है ही, उसमें तो कोई दोराय नहीं।
0: आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: सर फिल्म का नाम है तवायफ, और गीत के बोल है सर तेरे प्यार की तमन्ना, और आवाज है महेंद्र कपूर जी की।
0: ये बीआर चोपड़ा की फिल्म थी, और अच्छे गाने की याद दिलाई है, बहुत कम बजता है ये गाना। पूरी हो रही है आपकी फरमाइश।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश। नमस्ते सर जी।
0: नमस्ते, कौन बोल रहा है?
1: सर जी छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सतीश रघुवंशी बात कर रहा हूँ सर।
0: अच्छा, सबसे ज्यादा मजा तो इस बात से आया कि आप छिंदवाड़ा से बोल रहे हैं।
1: जी, और सर ये मीठी मीठी आवाज ऐसा लग रहा है कि हमारे बड़े आदरणीय यूनुस खान जी बात कर रहे हैं।
0: बिल्कुल, आपने सही पहचाना।
1: और सर मैं आपसे बहुत बेताब था सर बातें करने के लिए। सर मेरी आपसे हेलो फरमाइश के माध्यम से सर 2 से 3 साल बाद बात हो रही सर आपसे मेरी।
0: बहुत ही बढ़िया। छिंदवाड़ा शहर से एक अलग तरह का लगाव रहा है, कभी हम वहाँ रहे हैं और आकाशवाणी से जुड़े भी रहे हैं वहाँ पर।
1: बिल्कुल सर जी, और आप हमारे आकाशवाणी छिंदवाड़ा पे आए थे सर जी, उसके बाद में दूसरे दिन आकाशवाणी का मेरे को जानकारी हुई सर, बहुत दुख हुआ। मेरे को ये लगा कि एक दिन पहले जान लेता मेरे को आकाशवाणी
0: जी मुलाकात होती। बिल्कुल बिल्कुल। क्या हालचाल है छिंदवाड़ा की, बारिश कैसी है?
1: हमारे यहाँ पे तो बारिश सर अभी 2 दिन से हो रही है सर जी, और अभी पानी थोड़ा थोड़ा गिर रहा है सर अभी तो।
0: अच्छा, बढ़िया है। और अब ये बताइए कि विविध भारती छिंदवाड़ा में तो FM पर सुनाई देती है ना?
1: जी बिल्कुल सर, हम ऐप के माध्यम से विविध भारती सुनते हैं सर जी, न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से सर।
0: अच्छा, और सबसे ज्यादा पसंदीदा कार्यक्रम कौन सा है आपका?
1: सर जी मैं तो हेलो फरमाइश बहुत ज्यादा सुनता हूँ, और इसके बाद में हेलो सहेली भी सुनता हूँ सर जी। बहुत ही अच्छी प्रस्तुतिकरण होते हैं सर मुंबई आकाशवाणी के, और हमारे

0: वो भी अनाउंसर है सर जी, बहुत ही अच्छी वार्तालाप के साथ ये आज के फनकार सब बहुत ही अच्छे लगते हैं सर जी।
1: आज किस गाने की फरमाइश आप करने वाले हैं?
0: जी सर, आज मुझे सुनना है फिल्म का नाम है सर प्रेम रोग, और गीत के बोल रहेंगे सर जी, भवरे ने खिलाया फूल, फूल के ले गया राजकुमार।
1: क्या बात है, बढ़िया गाने की फरमाइश आपने की है। ये फिल्म देखी है आपने?
0: जी सर, प्रेम रोग फिल्म सर बहुत ही अच्छी है सर जी, और इसके गाने बहुत ही अच्छे लगते हैं सर जी।
1: बढ़िया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, राज कपूर की ये फिल्म। शुक्रिया, आपको सुनवाते हैं प्रेम रोग फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो यूनुस जी, नमस्ते जी।
0: नमस्ते, आप कौन बोल रही हैं?
1: सर मैं पहली बार आपसे बात कर रही हूँ, पर मैं आपका प्रोग्राम हमेशा सुनती रहती हूँ। सर पहले से मैं ये बोलना चाहती हूँ, जय जगन्नाथ, क्योंकि मैं पूरी ओडिशा भुवनेश्वर से बोल रही हूँ, इसलिए जय जगन्नाथ आपको।
0: जय जगन्नाथ।
1: और हमारा अभी रथ यात्रा गया है
0: जी।
1: तो मैं प्रियदर्शनी मिश्रा बोल रही हूँ, अभी मैं शायरी बोलती हूँ।
0: स्वागत।
1: मोहब्बत के भी कुछ अंदाज होते हैं, जागते आंखों में भी कुछ ख्वाब होते हैं। जरूरी नहीं गम में आंसू निकले, जरूरी नहीं गम में आंसू निकले, मुस्कुराते आंखों में भी सैलाब होते हैं।
0: क्या बात है, बेहतरीन। अब मुझे ये बताइए कि आप विविध भारती से इतना लगाव रखती हैं। हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपने तय कर लिया था कि आज मुझसे बात करनी है।
1: सर आप जैसे स्टार कहाँ मिलेंगे, विविध भारती में मिलेंगे, इसलिए इतना लगाव है
0: जी। कौन कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं प्रियदर्शनी को?
1: मुझे अच्छा

0: मैं सबसे ज्यादा आपका प्रोग्राम जब भी आप आते हैं, मैं सच में बोल रही हूँ, दिल से बोल रही हूँ, आप मेरे जज्बात को समझ सकते हैं
1: जी, जी।
0: फिर मुझे हलो सखी सहेली और गीतों से भरी कहानी ये बहुत अच्छा लगता है। और आज के फनकार बहुत सारे हैं सर, जैसे अपने विविध भारती, जैसे मेरे बचपन से विविध भारती सुनते आई हूँ।
1: अच्छा।
0: आज पूरा ओडिशा में हलचल मच जाएगा, मेरा लग गया फोन करके,
1: बिल्कुल
0: पूरी यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है।
1: तो आप किस शहर में, आपने कहा आप जगन्नाथपुरी में?
0: भुवनेश्वर, भुवनेश्वर से हैं।
1: तो
0: विविध भारती ऐसा क्या होता है ना, सभी कोई मिल जाते हैं, विविध भारती जैसा कोई स्टेशन नहीं मिलेगा हमें, जैसे लगता है हम ही बैठते हैं, हम ही बात करते हैं, हम ही सब कुछ है, क्योंकि आप एहसास नहीं करने देते हम पराए हैं।
1: बिल्कुल सही आपने बात बोली है।
0: और मेरा गाना है आंदोलन मूवी का, आएगी हर पल याद तुम्हें।
1: अब पूरी कर रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं जी?
1: मैं गिरीश कुमार तिवारी बोल रहा हूँ, भोपाल न्यूज से बात कर रहे।
0: अच्छा अच्छा, बताइए जी, भोपाल के क्या हालचाल हैं?
1: भोपाल में अच्छा है, इस वक्त हल्की हल्की बारिश है और मौसम भी बड़ा सुहाना है इस वक्त, और हरियाली छाई हुई है चारों तरफ और बड़ा अच्छा लगता है। हमारे यहाँ भोपाल तालाब है जो आसपास बिल्कुल हरियाली छाई हुई है, तो बड़ा अच्छा लगता है जब धीरे धीरे बरसात होती रहती है, रिमझिम वगैरह। बहुत अच्छा शहर है, हरियाली पहाड़ियों के उसमें।
0: जी, जब बहुत तेज बारिश होती है तो भदभदा के गेट खुल जाते हैं।
1: जी हाँ, और जब ज्यादा बारिश होती है तो जो नदी है उसका पानी आ जाता है, तो उसमें पूरे के पूरे गेट खुलते हैं, तब एक अलग ही बड़ा दृश्य रहता है वहाँ का।
0: और सब लोग वहाँ पिकनिक के लिए जाते हैं?
1: सब पिकनिक के लिए जाते हैं वहाँ पर।
0: तो इस बार अभी ऐसा मौका आया नहीं है?
1: नहीं, अभी गेट नहीं खुले, बारिश भी नहीं हुई है, हल्की रिमझिम रिमझिम टाइप की होती रहती है।
0: और बताइए अपने बारे में और भोपाल शहर के बारे में।
1: भोपाल शहर तो वैसे भी आप, बिरला मंदिर है, भोपाल तालाब है, सैर सपाटा है, बंदेहार है, कई जगह है, और भोपाल के पास सांची है, और यहाँ भीमबेटका भी है अपने अब्दुल्लागंज के आगे
0: जी,
1: जहाँ पांडव वगैरह ने निवास किया था
0: जी,
1: और कई जगह है वहाँ।
0: बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बात आपने कही है। अच्छा, कौन से गाने की फरमाइश करना चाहते हैं आप?
1: मैं उपकार फिल्म का मेरे देश की धरती सोना उगले उगले ही वह मोती।
0: क्या बात है, ये बहुत ही शानदार गाना गुलशन बावरा का लिखा
1: हुआ। और मेरे को देशभक्ति फिल्में बहुत पसंद है।
0: अरे वाह,
1: फिल्में भी मैं देखता हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है। चलिए पूरी करते हैं आपकी फरमाइश, सुनवाते हैं आपको उपकार फिल्म का ये गाना।

0: चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: फसा। अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कहीं ना कहीं जहन में रहता है कि यूनुस सर कैसे बात करते हैं, कैसे बताते हैं, कैसे प्रोग्राम को पेश करते हैं। मतलब आप जब बात करते लगता है कि मैं रेडियो नहीं टीवी देख रहा हूँ, ऐसा फील होता है सर।
4: बहुत शुक्रिया। और आज की इस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं।
3: मेरा अभी क्योंकि जिस मौसम में है और जो पूरे भारतवर्ष में एक अलग ही बरसात का माहौल बना है, तो एक रफी साहब का अनजाना मूवी का बड़ा ही प्यारा गाना है। आप बोले तो मैं गा के गुनगुनाऊं, ऐसे बता दूं?
4: नहीं नहीं बिल्कुल गाइए।
3: रिमझिम के गीत सावन गा।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: जी, कौन कहाँ से?
1: सर, संत हिरदाराम नगर बैरागढ़ भोपाल मध्य प्रदेश से मैं प्रकाश जाबी बात कर रहा हूँ। सर
0: जी, कैसे हैं आप?
1: बस सब बढ़िया है, अच्छे रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, आपका कार्यक्रम सुनते रहते हैं और मस्त रहते हैं।
0: बहुत बढ़िया।
1: पहली बार फोन लगा सर, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। निरंतर आपका कार्यक्रम सुनते रहते हैं, दिन भर हमारा रेडियो चालू रहता है शॉप पे, हमारे टेलरिंग का काम है तो काम के साथ हम लोगों का मनोरंजन बहुत बढ़िया आप लोग करते हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ विविध भारती को।
0: बहुत शुक्रिया। आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: सर मुझे धर्मात्मा फिल्म का गाना सुनना था।
2: खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो,
1: ये वाला गाना सुनना था सर।
0: जी जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इस गाने की आपने फरमाइश की। सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ जी नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं नरेश प्रजापति बात कर रहा हूँ, ग्रीन सिटी क्लीन सिटी से।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया
1: जी। सर बस बहुत अच्छा हूँ, और विविध भारती का जो हेलो फरमाइश है बड़ा ही लोकप्रिय और चर्चित प्रोग्राम है। एक बार जब मैंने इस प्रोग्राम में सुना, एक श्रोता का कॉल लगा और उन्होंने बताया कि 20 साल बाद मेरा कॉल लगा।
0: हाँ जी हाँ जी।
1: तो बड़ा अचंभा लगा, भाई 20 साल से भी श्रोता कॉल लगा रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, कई ऐसे श्रोता होते हैं जो बहुत ज्यादा कोशिशें करते हैं, क्योंकि देश भर के श्रोता जब कॉल लगा रहे होते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है उनका फोन लग पाए।
1: बिल्कुल, और ये रेडियो के प्रति श्रोताओं का जुनून होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और वाकई मैं भी विविध भारती का पुराना लिसनर्स हूँ और काफी समय से सुनता आ रहा हूँ। कोरोना काल में कुछ कार्यक्रम बंद हुए, लेकिन अब वो फिर से चालू हुए हैं, इसके लिए देश की सुरीली धड़कन को तहे दिल से धन्यवाद।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं आप?
1: किशोर दा की आवाज में मंजिल फिल्म से गीत है, रिम झिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन।

0: हेलो फरमाइश जी, बोलिए, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हम ही बोल रहे हैं, बेंगलुरु से।
0: आपका नाम क्या है?
1: सीतारामन।
0: सीतारामन जी, कब से आप विविध भारती सुन रहे हैं?
1: हम तो 1957 से, हम पैदा हुए 1940 में
0: जी,
1: अभी हमारा 86 ईयर्स हो रहा है।
0: और पूरी जिंदगी विविध भारती के साथ बिताई है आपने?
1: हाँ, विविध भारती का पंचरंगी कार्यक्रम ऐसा था पहले।
0: जी हाँ, जी हाँ।
1: उसके बाद में चेंज हो गया विविध भारती।
0: बिल्कुल, देश की सुरीली धड़कन हम बोलने लगे उसके बाद।
1: मिस्टर यूनिस खान बोल रहे क्या?
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: मेरी प्रेजेंट सरप्राइज है। और तो कैसे है?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। आप बताइए, विविध भारती से जो आपका लगाव रहा है उसके बारे में बताइए।
1: बहुत अच्छा लगाव है। हम तो पहले तो यही तो था, विविध भारती और रेडियो सिलोन। तो रेडियो सिलोन तो बाद में बंद हो गया, लेकिन विविध भारती जो है बहुत अच्छे से तरह चल रहा है।
0: आपको हिंदी सिखाने में विविध भारती ने क्या भूमिका निभाई है?
1: बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हम तो ऐसा तो लग रहा है कि हमको जितना प्रोग्राम बज रहा है ना वो कम है, और ज्यादा होना चाहिए।
0: अच्छा, क्या बात है। अच्छा, आज आप किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: हम तो गजल का।
0: कौन सा?
1: मोहम्मद रफी का है। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, यही वाला गाना।
0: क्या बात है, आप तो गाते भी बहुत अच्छा है। जरा सुनाइए कुछ।
1: पहले हम गाते थे, लेकिन बीच में क्या हो, गला खराब हो गया हमारे। बोल यहाँ पर गले में कैंसर हो गया था। बाद में से ट्रीटमेंट किया, ठीक हो गया, लेकिन हमारा जो रेडिएशन चलते है, हमारे गला का बॉक्स जो है खराब हो गया।
0: जी हम समझ सकते हैं, और हमको बहुत अच्छा लगा कि आपसे बात हुई।
1: नूर की आलत किसे पेश करूं, मुरादों की हसीनात किसे पेश करूं।

0: हेलो फरमाइश।
1: मैं कुशलेश वर्मा जयपुर राजस्थान से।
0: अच्छा अच्छा बोलिए, कैसे हैं जी?
1: मैं बढ़िया सर, बहुत टाइम से सोच रहा था आपसे बात करने की, लेकिन कई बार कॉल नहीं लगता है, मैंने कॉल करना ही छोड़ दिया था, लेकिन आज कॉल लगा, बहुत अच्छा लग रहा है
0: जी। आखिरकार मेहनत रंग लाई आपकी
1: जी।
0: जयपुर की क्या हाल है, बारिश हो रही है?
1: बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है, रोज अलर्ट आता है कि भारी वर्षा की संभावना है, लेकिन बारिश हो नहीं रही है बिल्कुल, क्योंकि बारिश जो है शायद सावन का इंतजार कर रही है, इस बार सावन लेट है तो बारिश भी सावन के साथ ही आने वाली है
0: जी। जबकि पिछले बरस तो क्या बारिश हुई थी जयपुर में,
1: पिछले बरस तो सारे रिकॉर्ड टूट गए थे बारिश के,
0: और इस बरस जो है वो बारिश लंबा इंतजार करवा रही है आपको।
1: बेहद लंबा इंतजार करा रही है, लोग तरस गए हैं, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है, मतलब गर्मी से ज्यादा ये वाला मौसम जो है वो परेशान कर रहा है
0: जी। बिल्कुल, आप क्या करते हैं जयपुर में?
1: मैं चाय का बिजनेस है छोटा सा, उसे रन कर रहा हूँ। इससे पहले मैं जॉब करता था MNC कंपनी में।
0: अच्छा अच्छा, तो कारोबार अच्छा चल रहा है आपका?
1: हाँ, अभी मतलब नया स्टार्टअप है तो थोड़ा टाइम लग रहा है सेट होने में, धीरे धीरे जम जाएगा।
0: बताइए आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: मैं वारिस फिल्म का गाना सुनना चाहूंगा, लता मंगेशकर जी की आवाज में, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम।
0: क्या बात है जी, ये उत्तम सिंह जी का संगीत और बहुत ही शानदार फिल्म। अच्छा लगा आपसे बात करके, सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए हम आपके टेलीफोन कॉल्स सोमवार को रिकॉर्ड करते हैं दिन में 11 बजे। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 0222867 0288 यानी 0222867 0288 और 0224002466 यानी 0224002462। आपको बता दें कि सोमवार को दिन में 11 बजे फोन कॉल्स रिकॉर्ड होते हैं और जिन श्रोताओं के कॉल्स एक बार शामिल हो जाते हैं उनसे हम ये अनुरोध करते हैं कि कृपया 2 महीने तक हमें कॉल न करें ताकि नए श्रोताओं को मौका दिया जा सके। चलने से पहले आपको ये बता दें कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुर लेकर का था और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया राघवेंद्र सिंह नेगी ने। इस कार्यक्रम का सफर आपने तय किया अपने दोस्त यूनुस खान के संग। तो अब अगली बार होगी मुलाकात, तब तक नमस्कार।
1: हेलो
2: हेलो फरमाइश।

0: एक गीतकार जिसके गानों के बिना न हमारी सुबह होती है न होती है शाम।
1: ये शाम मस्तानी।
0: एक गीतकार जिसने कुछ गाने खुद भी गाए।
1: दिल इंसान का एक तरह।
0: आनंद बख्शी की यादें बांटेंगे उनके बेटे राकेश आनंद बख्शी।
2: पार्टीशन हुआ ऑगस्ट में, अक्टूबर में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स आर्मी में हैं, तो उनका जो कोड नेम था वो आजाद था।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 28 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आजा तेरी याद आई।
4: कहीं दूर जब दिन ढल जाए।
0: मुकेश के गानों में है सादगी।
1: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
0: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
1: कहीं करती होगी इंतजार।
0: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
1: जाऊं कहां बताए दिल।
0: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
5: जिस देश में गंगा बहती है। जिस देश में गंगा बहती है।
0: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ

रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज गूंज रही है इस कार्यक्रम की शुरुआत में। डॉक्टर राही मासूम रजा का कलाम है। दिन की इस भागदौड़ में सुबह के 11 बज चुके हैं और इस भीगे मौसम में विविध भारती कुछ गजलों की फुहारें छोड़ रही है आपके नाम।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 27 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची हैं, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए,
0: विविध भारती से रंग तरंग कार्यक्रम चल रहा है और अब गुलजार के बोल आशा भोसले की आवाज एल्बम का नाम दिल पड़ोसी है।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

संभाले जलते तवे पर, जलते तवे पर झुलस गया पानी।

0: निदा फाजली की रचना थी, चंदन दास की आवाज थी।
1: देर तक बैठे हुए दोनों ने बारिश देखी। वो दिखाती थी मुझे बिजली के तारों पर लटकती हुई बूंदें, जो ताकुब में थी एक दूसरे के, और एक दूसरे को छूते ही तारों से टपक

मुझको ये फिक्र कि बिजली का करंट छू गया नंगी किसी तार से तो आग के लग जाने का बायस होगा। उसने कागज की कई कश्तियां पानी में उतारी और ये कह के बहा दी कि समंदर में मिलेंगे। मुझको ये फिक्र कि इस बार भी सैलाब का पानी कूद के उतरेगा कोहसार से, जब तोड़ के ले जाएगा ये कच्चे किनारे। ओक में भर के वो बरसात का पानी अध भरी झीलों को तरसाती रही। वो बहुत छोटी थी, कमसन थी, वो मासूम बहुत थी। आबिशारों के तरन्नुम पे कदम रखती थी और गूंजती थी, और मैं उम्र के इफकार में गुम तजुर्बे हमराह लिए साथ ही साथ में बहता हुआ चलता।

0: अदनान समी बारिश की बूंदों का गाना गा रहे थे।
1: oh, yeah.
0: विविध भारती से आप सुन रही हैं रंग तरंग, एक गीतकार जिसके गानों के बिना न हमारी सुबह होती है न होती है शाम।
2: ये शाम मस्तानी।
0: एक गीतकार जिसने कुछ गाने खुद भी गाए।
2: दिल इंसान का एक
0: आनंद बख्शी की यादें बांटेंगे उनके बेटे राकेश आनंद बख्शी।
3: पार्टीशन हुआ ऑगस्ट में, अक्टूबर में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स आर्मी में हैं, तो उनका जो कोड नेम था वो आजाद था।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 28 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
4: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची हैं, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
0: एक और आ गया।
4: एक और आ गया।
5: कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
6: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
7: सुनिए
0: छाया कंगुली की सोंधी आवाज, जमीर काजमी के बोल।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत अंदाजे 60 कोटी लोक 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या मोफत उपचारांसाठी पात्र ठरले आहेत. आतापर्यंत 12 कोटींहून अधिक मोफत उपचार देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे गरीब कुटुंबांच्या वैद्यकीय खर्चात अंदाजे 2 लाख कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. आजच आयुष्मान ॲप डाउनलोड करा आणि आयुष्मान कार्ड बनवा. अधिक माहितीसाठी 1455 वर कॉल करा.
1: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो.
2: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ. एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी. पेमेंट लिंक भी भेजा है.
1: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है. धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं.
2: सच?
1: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो. सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें.
2: समझ गया.

ग्यारह बजकर 47 मिनट और 42 सेकंड हो चुके हैं। विविध भारती से गजलें बज रही हैं और साथ में कुछ मॉडर्न गाने भी। केके की आवाज गूंज रही है।

सुरेश वाडकर की आवाज में ये सनी फिल्म की रचना थी और रंग तरंग प्रोग्राम की ये आखिरी पेशकश थी। रंग तरंग कार्यक्रम तो यहाँ खत्म हो रहा है, लेकिन विविध भारती पर कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। सुनते रहिए विविध भारती।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 27 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने में कई कदम उठाए गए हैं, दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
4: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे, विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी, कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
3: कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रश्न पत्र लीक से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट्रैक कोर्ट के निर्णय की सराहना की है।
5: प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
3: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार छात्रों के लिए न्याय सुनिश्चित करने और उनके भविष्य को खतरे में डालने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया में श्री सिंह ने कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ कल रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भूख हड़ताल पर बैठे कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से मुलाकात की और छात्रों की चिंताओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने श्री वांगचुक को रचनात्मक संवाद और सकारात्मक हस्तक्षेप का आश्वासन दिया, जिसके बाद उन्होंने अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने का फैसला किया। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध और विद्यार्थियों के प्रदर्शन को लेकर दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई थी। दिन में 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
6: दिनांक 26 जुलाई 2026 को कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के उन वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है।
3: श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन को दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया। दिन में 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर भी सदन में करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि करगिल विजय दिवस 1999 के करगिल युद्ध में भारत की विजय का स्मरणोत्सव है। राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित हो गई है, लोकसभा की कार्यवाही जारी है। भारत ने कल हरारे में 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंदों में 50 रन की शानदार पारी खेली। भारत ने महज 14वें ओवर में 126 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 1% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 719 अंक गिरकर 75,672 जबकि निफ्टी 196 अंक गिरकर 23,673 पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, थोड़ी ही देर में याद

0: एक गीतकार जिसके गानों के बिना ना हमारी सुबह होती है ना होती है शाम।
1: ये शाम मस्तानी।
0: एक गीतकार जिसने कुछ गाने खुद भी गाए।
1: दिल इंसान का एक तरह।
0: आनंद बख्शी की यादें बांटेंगे उनके बेटे राकेश आनंद बख्शी।
2: पार्टीशन हुआ ऑगस्ट में, अक्टूबर में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स आर्मी में हैं, तो उनका जो कोड नेम था वो आजाद था।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 28 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जब दिन ढल जाए।
1: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
1: मुकेश के गानों में है रुमानी।

0: हम सबके भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
1: जाऊं कहां बताए दिल।
0: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
1: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
0: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

गीता फिल्म का गीत राजा मेहंदी अली खान के बोल थे, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। शोर फिल्म का गाना संतोष आनंद के बोल, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। विविध भारती पर यादों की महफिल, आज मनोज कुमार की याद।

पहचान फिल्म का ये गीत आपने सुना। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। फिल्म का नाम सन्यासी। विश्वेश्वर शर्मा है गीतकार।

सिलसिला फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना। बहुत सारे श्रोताओं ने कहा है कि इस गाने को इसके अलावा अमिताभ बच्चन ने भी गाया है। आराम से हम अमिताभ बच्चन वाला वर्जन सुनवा सकते थे, लेकिन हमने चुना लता मंगेशकर वाला संस्करण। एक क्यूट सी बातचीत वाला टेक्स्ट हमने आपको आज के इस कार्यक्रम के लिए दिया है, जिसमें से आपको शब्द चुनने हैं और ये अंदाजा लगाना है कि भाई आज के इस कार्यक्रम में किन किन शब्दों के साथ गाने लिए जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इस टेक्स्ट में शामिल हर शब्द के साथ गाने लिए जाएं, और दिलचस्प ये है कि कुछ गुगली भी हो सकती है, यानी जो गाना आप चुने हो सकता है कि वो शामिल ही ना हो, तो मज़ा आएगा इस अंदाजे के खेल में भी। लेकिन बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बात कही है। एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे तो लाल रंग पसंद है, ये रंग माता रानी चुनरी के रूप में चढ़ाया जाता है और ट्रेन को आपात स्थिति में रोकना हो तो लाल कपड़ा लहरा कर रोका जाता है। जब इन्होंने रंग की बात कर ही दी है तो हम भी क्यों ना करें। चलिए आप सभी बताइए कि अगर कोई एक रंग चुनने को कहा जाए और फेवरेट रंग बताने को कहा जाए तो आप कौन से रंग को अपना फेवरेट रंग कहेंगे। यहां की जो बातचीत थी उसमें लड़का कहता है कि उसे नीला रंग पसंद है और लड़की कहती है कि उसे लाल रंग पसंद है। लड़का लड़की की बातचीत तो हो गई, लेकिन आप क्या कहेंगे, कौन सा रंग पसंद है आपको। और इसके अलावा एक श्रोता का कमेंट है, अनुमान अनुरूप अकल्पनीय आरंभ सुरीला सफर के पहले शुरुआती गाने में बहुत अच्छा लगा। एक और श्रोता लिखते हैं कि नीले से याद आया राजेश खन्ना, फिल्म सफर में कहते हैं, जानती हो नीला प्रेम की परिभाषा है, क्या प्रेम रोक लेने में नहीं समझ लेने में होता है, ये तुम तब समझोगी जब मैं एक दिन तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा। ये बहुत ही प्यारी बात लिखी एक श्रोता ने। इसके अलावा एक श्रोता ये लिखती हैं कि यश चोपड़ा ने रात के बैकड्रॉप में दोनों किरदारों के बीच की केमिस्ट्री को बड़ी खूबसूरती से फिल्माया था। और इसके अलावा रेखा और अमिताभ हमारी फेवरेट हैं, ये बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। और इसके अलावा एक श्रोता हैं, बल्कि कई श्रोता हैं मुझे एक के बाद एक कमेंट्स नजर आ रहे हैं, जो कह रहे हैं घोड़ा चतुर वाला गाना जरूर बजाइएगा, देखते हैं कार्यक्रम के सफर में क्या हो पाता है। और एक श्रोता है जिन्होंने बिल्कुल पूरी फहरिस्त लिखी है कि इन शब्दों से ये गाने बजाए जाएंगे। 11 गानों और शब्दों की फहरिस्त है, आपकी मेहनत को सलाम। इसके अलावा एक श्रोता ये लिखते हैं कि मुझे तो हरा रंग पसंद है, सप्तरंगी, इंद्रधनुष, तितलियां, पता नहीं इन्होंने बहुत सारी अलग अलग शब्दों के साथ अपनी बात कही। और इसके अलावा

और भी बहुत सारे श्रोता हैं जो आज के इस कार्यक्रम में कमेंट कर रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं, ईजादे इबारत कर गए जो आज पुनः पधारे हैं, सुरीला सफर में नई ऊर्जा फूंकने स्वयं पधारे हैं, शुक्रिया आपका। मेरे स्कूल के दिनों में सीनियर लड़के लड़कियां सन्यासी फिल्म के गाने पर डांस किया करते थे। पिछले कार्यक्रम में जो गाना बजा उसकी बात हमारे एक श्रोता ने की है, और इसके अलावा बहुत सारे और भी श्रोता अपनी बातें कर रहे हैं। और आज के इस कार्यक्रम में मैं आपसे कुछ दिलचस्प सवाल भी पूछूंगा, और इन दिलचस्प सवालों के जवाब जब आप देंगे तो हम आपको थोड़ा ज्यादा पहचान पाएंगे, आपस में बात होगी, बात से बात चलेगी और कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। हमने आपसे पूछा है कि आपका पसंदीदा रंग कौन सा है। आप में से सभी श्रोता अपनी अपनी बात कहें, और सिर्फ रंग का नाम नहीं लिखें बल्कि अपनी बात भी कहें कि ये रंग क्यों पसंद है। तब तक इन साहब की बात सुनते हैं जो किसी एक रंग की बात कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर बताइएगा कि ये गाना किस फिल्म का है और किस कलाकार पर फिल्माया गया है।

भाई ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। इस गाने के बारे में बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा कि प्रेम नगर फिल्म का ये गीत राजेश खन्ना और हेमा मालिनी। एक श्रोता लिखते हैं कि आसमानी रंग मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसी से समंदर में पानी का रंग बनता है और दूर पर्वत भी इसी रंग में दिखाई पड़ते हैं। एक और श्रोता है जो लिखती है कि हरे रंग की जहां बात है तो बचपन हरियाली भरे गांव में गुजरा, दूसरे नगर चलकर स्कूल जाते वक्त हरे भरे खेतों के बीच गुजरते रास्तों से जाना होता था, छुट्टी के दिन खेत में जाना होता था, प्रकृति के बीच जो पले बढ़े हैं उन्हें हरा रंग बहुत पसंद आता है। एक और श्रोता है जिन्हें हरा रंग पसंद है, सुबह उठकर सबसे पहले मैं अपने बगीचे के हरे पौधों को देखती हूं, आंखें खुश हो जाती हैं। एक और श्रोता है जिन्हें हरा रंग पसंद है, उनका कहना है कि हरे रंग की अपनी एक कहानी होती है, हर रंग की अपनी एक कहानी होती है, कोई खुशी का एहसास बन जाता है, कोई यादों का और कोई किसी अपने की मुस्कान का। शायद इसीलिए रंग कभी सिर्फ रंग नहीं होते, रंग तो सभी प्यारे होते हैं, बस देखना यह है कि हमारी आंखें किस रंग को अपना मानती हैं। बहुत ही प्यारी बात। एक श्रोता फिरोजी रंग को पसंद करती हैं, कहती हैं कि ये ईश्वर का रंग है, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं कहना है, सिर्फ ये कि आपकी आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता हैं जिन्हें ब्लैक एंड व्हाइट पसंद हैं और उनका कहना है कि ब्लैक एंड व्हाइट रंग जल्दी मिल जाते हैं इसलिए इन्हें पसंद है। एक और श्रोता हैं काला रंग उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है। एक और श्रोता हैं जिन्हें हरा रंग पसंद है। एक और श्रोता हैं जिन्हें लाल रंग पसंद है। एक श्रोता हैं जिन्हें आसमानी रंग पसंद है। कितने श्रोताओं ने अपनी बातें लिख दी हैं और इन बातों में उनके जीवन की कुछ कुछ कहानियां भी छिपी हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि ईश्वर द्वारा नवाज आपके मीठे स्वर और आपकी आवाज में शब्दों को खूबसूरत अंदाज में पेश किया था, आपका शुक्रिया। जरा नवाजी हौसला बढ़ाने के लिए बहुत बहुत बहुत शुक्रिया। एक श्रोता है जिन्होंने कहा कि मुझे लेवेंडर कलर बहुत पसंद है, प्रकृति भी ये रंग बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाती है, मुझे लेवेंडर के फूल, ऑर्किड, जामुन और बैंगनी ये सारी छटाएं पसंद हैं इस रंग की। और एक श्रोता है जिन्हें काला रंग पसंद है, इसके साथ कुछ भी मैच कर लो मैच हो जाता है। पीले रंग को पसंद करने वाले भी बहुत सारे श्रोता हैं और अब हम समंदर की तरफ जाने वाले हैं। रंगों की इस महफिल से आगे बढ़कर समंदर की तरफ चलते हैं और इस सवाल के साथ चलते हैं कि जब आपके शहर में बारिश होती है और बहुत अच्छी बारिश, पिकनिक का मौसम हो जाता है, तो अपने शहर के आसपास कौन सी ऐसी जगह आप जाते हैं जहां बहुत सारा पानी है। जैसे भोपाल के लोग भदभदा डैम की तरफ चले जाते हैं, जबलपुर के लोग सीधे जाते हैं भेड़ाघाट की तरफ, और इलाहाबाद और बनारस के लोग घाटों की तरफ जाते हैं। आप बारिश के दिनों में पिकनिक मनाने कहां चलते हैं? इस प्यारी बात के साथ समंदर की ओर रुख किया जाए। अनंत लहरें किनारों से टकराती चली जाती हैं लेकिन थकती नहीं, सदियों से टकरा रही हैं, चलती चली जा रही हैं, हमें प्रेरणा देते हुए कि जीवन चलने का नाम है, रुकने का नाम नहीं है। कहां कहां का समंदर आपने देखा और समंदर के किनारे खड़े होकर बैठकर आपके दिल में किस तरह के ख्याल, किस तरह के एहसास आए, ये भी बताइएगा।

क्या प्यारा गाना, और बहुत सारी श्रोताओं को इस गाने में बड़ा अच्छा लगा। एक श्रोता लिखती हैं कि लता जी कितना सुंदर गाती हैं और बोलती भी कितना मधुर हैं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा कि ये बारूद फिल्म का गाना है। एक और श्रोता की बात कि मैं समंदर के किनारे जाती हूँ, जब बारिश होती है तब उसकी लहरें भी काफ़ी ऊंची होती हैं, लहरों की बूंदें जब चेहरे से टकराती हैं तो मन रोमांचित हो जाता है, बहुत खुशनुमा माहौल होता है। एक और श्रोता कहती हैं कि पुरी में समंदर के सामने बैठी रही, लहरों को आते जाते देखती रही। एक और श्रोता का कहना है कि नीले समुद्र की अथाह गहराई को देखकर लगता है मानो धरती ने अपने सारे सपने नीले आकाश की गोद में सजा दिए हैं। कितनी सुंदर बात लिखी है। एक और श्रोता हैं जिनका कहना ये है कि मैंने मुंबई, थाईलैंड, कन्याकुमारी, दुबई, न्यूजर्सी के अंतिम छोर का समुद्र देखा। एक और श्रोता है, समुद्र केवल पानी का विस्तार नहीं बल्कि इंसानी भावना और अनंत गहराइयों का एक जीता जागता दर्पण है। इसकी हर लहर में एक कहानी, एक खामोशी, एक गहरा सुकून छिपा होता है। एक और श्रोता का कहना है कि बारिश के दिनों में हम अपने गांव चले जाते हैं जहां घर के आंगन से ही पर्वत और हरियाली देखकर मन खुश हो जाता है। एक और श्रोता है जिन्होंने गुहागर, रामेश्वर, कन्याकुमारी, जगन्नाथपुरी, गोकर्ण और महाबलेश्वर में समुद्र का है, गोकर्ण वगैरह का समुद्र देखा। एक और श्रोता जिन्होंने ये लिखा है कि हमारे शहर के आसपास जब अच्छी बारिश होती है तो खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बने डैम का पानी लबालब भर जाता है। माँ नर्मदा अपने पूरे उफान पर होती हैं, डैम के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और ये दृश्य बड़ा ही देखने लायक होता है। तेज वेग से बहता हुआ पानी, उसकी गूंज, प्रकृति का विराट रूप मन को रोमांचित कर देता है। इसीलिए जब डैम के गेट खुलने की खबर सुनाई देती है तो लोग भागते हैं उस नजारे को देखने के लिए। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि 1973 में मुंबई का समुद्र देखा था और अंधेरी से गेटवे ऑफ इंडिया तक पैदल गया था। ओहो हो हो, बड़ा लंबा सफर किया आपने। इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने कहा कि कटक शहर के पास एक चिल्का झील है, पुरी, पारादीप, गोपालपुर, चांदीपुर जैसे समुद्र तट हमने देखे हैं। एक और श्रोता कहती हैं कि हमारे सूरत शहर में इस बार बारिश जो है वो तबाही लेकर आई है। समुद्र का कनेक्शन तो जीवन से है, समुद्र की गहराई और ऊंचाई और उस तरह से हमारे जीवन के उतार चढ़ाव सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। ये भी हमारे एक श्रोता की बात है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मुझे आसमानी रंग पसंद है, जलंधर सिटी में आज बादल नहीं छाए हैं, आसमान बिल्कुल साफ है। एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि हमने कोंकण में तार कर ली, देवगढ़, गणपति पुले, आरे वारे, जितने भी किनारे मिले हैं सब देखाए हैं। एक और श्रोता है जिनका कहना ये है कि जब भी मैं कपड़े सिलवाता हूँ तो ब्लू पैंट, वाइट शर्ट और ब्लू कोट सिलवाता हूँ और मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे मैं एयरफोर्स में हूँ। एक और श्रोता है जिनका कहना है कि उन्हें ब्राइट कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और इसके अलावा एक श्रोता है जिनका कहना है कि हमारी नन्ही परी को पर्पल कलर पसंद है। फिर एक और श्रोता जिन्होंने कहा है कि वादियों में थोड़ा नीलापन, गेहूं की बालियों का सुनहरा रंग, थोड़ा तांबई नीम के पेड़ों में सांझ से थोड़ी लालिमा वाला रंग, एक भरा पूरा इंद्रधनुष टहूकता रहता है, मुझे ये सारे रंग बहुत पसंद हैं। बस इसी बात की डोर पकड़ कर चलते हैं वादियों की तरफ ये गाना सुनने के लिए। आपको बताना है कि मुकेश के साथ इस गाने में जो गायिका है उनका नाम क्या है और ये गाना किस फिल्म का है, और साथ में ये कि आपको किस इलाके की वादियां बहुत पसंद हैं, आपके दिल के करीब हैं।

कुछ श्रोताओं ने जवाब लिखे हैं, आंचल फिल्म का ये गाना राखी राजेश खन्ना के लिए ये गाना गाती हैं। और इसके अलावा कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि ये गाना हमने पहले कभी नहीं सुना। विविध भारती, ध्यान से सुनिए, ये गाना विविध भारती पर कभी कभी बजता है। मजरू सुल्तानपुरी की बोले, ये भी एक श्रोता ने लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे भोर बहुत पसंद है, क्योंकि सवेरे जब उठो तो उठते ही नई ताजगी, नई उम्मीद के साथ, जैसे खिड़की खोलते ही एहसास संध्या में नहीं होता। एक और श्रोता लिखते हैं कि बरसात में जब पानी ज्यादा गिरने लग जाए तो दीवारों में सीलन जमने लगती है, दीवारों के रंग निकल कर कैसे तो दिखने लगते हैं, रंग का मिजाज अलहदा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि हम तो मैदानों में रहते हैं जहाँ खेती बाड़ी होती है, यहाँ नदियाँ तो हैं, पहाड़ और वादियाँ दूर दूर तक नहीं हैं। उत्तर नेपाल के पहाड़ 150-200 किलोमीटर दूर हैं, दक्षिण विंध्य की पहाड़ियाँ भी बहुत दूर हैं। एक और श्रोता हैं जो लिख रहे हैं कि भोर की बेला इतनी सुहानी होती है कि मध्यम उजाले और नीरव शांति में मेडिटेशन करने का, प्राणायाम करने का मजा अलग होता है और गौर से सूर्योदय देखने का मजा भी अलग होता है। कई श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हमें भोर बहुत ज्यादा पसंद है, पर कुछ श्रोता तो ऐसे भी होने चाहिए ना जिन्हें शाम पसंद है। क्या आप बता सकते हैं कि अब जो गाना आ रहा है उसे किसने लिखा है और ये किस फिल्म का गाना है? और हाँ, आपको अगर शाम पसंद है तो वो शाम कहां बिताना पसंद है ये बताइएगा।

0: सुरेश वाडकर और उषा मंगेशकर की आवाजें, कानून और मुजरिम फिल्म का ये गाना, और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि ये अहमद वसी का लिखा गीत है। बहुत सारे श्रोता ये भी जानते हैं कि अहमद वसी किसी वक्त में विविध भारती के उद्घोषक हुआ करते थे। अहमद वसी की याद इस गाने के जरिए। एक श्रोता हैं जो लिखती हैं कि शाम दिन का वो खूबसूरत पल है जब आसमान धीरे धीरे अपने रंग समेटता है और मन अपनी भाग दौड़ लगता है। पूरी प्रकृति कह रही है कि अब कुछ पल सुकून से अपने साथ बैठो। एक श्रोता का कहना है कि संध्या का समय अच्छा लगता है, क्षितिज पर पिघलता सूरज और खामोश होती हवाएं दिल में एक अजीब सा सुकून भर देती हैं। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि उन्हें शाम पसंद हैं, और एक श्रोता हैं जो कहते हैं कि भोर और शाम का असली आनंद खुले आसमान के नीचे मिलता है। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे शाम इसलिए पसंद है क्योंकि बच्चे और पति वापस आने वाले होते हैं, तो खाना क्या बनाऊं और जल्दी जल्दी खाना बनाकर सबके साथ बैठना बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता जो कहती हैं कि वो सुबह ज्यादा एक्टिव रहती हैं, हल्की सुबह का धुंधलका उन्हें बहुत पसंद है और जैसे जैसे शाम होने लगती है उनका दिल बेचैन होने लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं
1: आसमां के नीचे।
0: आसमां के नीचे

0: भाई आसमां के नीचे ये प्यार का जहां बसाने के लिए चल पड़े हैं। एक श्रोता कहते हैं कि अगर किसी ने कहा कि अभी कहीं चलते हैं घूमने के लिए तो भैया हम अपने गांव जाना पसंद करेंगे। एक श्रोता है जो कन्याकुमारी जाना पसंद करेंगे। एक और श्रोता है जो सागर के किनारे किसी सनसेट पॉइंट जाना पसंद करेंगे। एक श्रोता है जो कह रहे हैं कि भोपाल में 10 से 15 किलोमीटर पर बहुत सारे डैम हैं, वहाँ जाना चाहिए। कंचनजंगा पर्वत किसी को जाना है। और कई श्रोता ऐसे हैं जिन्हें आमेर नाहरगढ़ के किले में जाना पसंद है, तो किसी को लास वेगस जाना पसंद है। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि अगर मौका मिले तो इसी वक्त पचमढ़ी चला जाऊं। ओहो क्या बात है। और एक श्रोता हैं जिनको कहना है कि मौका मिले तो अभी मैं विविध भारती के कार्यालय आ जाऊं। क्या बात है, प्यारी बात। और इन सबसे होते हुए अब हम उदासी की राह पर चल पड़े हैं और चुप की राह पर चलते हुए ये गाना आपको बताना है कि किस फिल्म का गाना है और किसने लिखा है।
1: बस रे चुप।

0: एक श्रोता लिखते हैं कि भाई कैसे 50 मिनट बीत गए हैं, पता ही नहीं चला, और तकरीबन आखिरी गाने की तरफ आ गए हैं। एक श्रोता है जिन्हें घोड़ा चतुर वाले गाने का इंतजार है, लेकिन आज शायद वो गाना आ नहीं पाएगा। भाई सब गाने कैसे बजाएं, क्योंकि कार्यक्रम का समय भी तो सीमित है, और आखिरी में अगर ये बात हो तो ज्यादा अच्छा रहता है।
1: बात नजरों की
0: इस बात के साथ कि आज इस वक्त इस पल कौन है जो आपसे रूठा हुआ है और आपको मनाने की जिम्मेदारी दी गई है।

भाई बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं और कार्यक्रम का ये जो सफ़र है अब अपने आखिरी मकाम पर पहुंच गया है, तो बड़ा मुश्किल है कि कौन से कमेंट्स शामिल करें और कौन से छोड़ें, पर ये वादा करते हुए जा रहे हैं कि आपके सारे कमेंट्स हम पढ़ते हैं और यहाँ से निकलने के बाद भी पढ़ेंगे, तो ये समझिएगा कि सभी कमेंट्स पर हमारी नज़र ज़रूर पड़ती है और कई लोगों को आज का ये कार्यक्रम पसंद आया है, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी में सुर घोलते रहिए, विविध भारती के संग रहिए, जैसे कि मैं बोलता हूँ हमेशा आपसे कि दिन की इस भागदौड़ में जहाँ कहीं भी रहिए, बने रहिए विविध भारती के संग। कार्यक्रम का सफ़र आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया। प्रतीक्षा समाचारों की।

0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, वंदे मातरम।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जयघोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 38वीं कड़ी।

0: वंदे मातरम नामक साप्ताहिक पत्रिका का बड़ा योगदान रहा इस क्रांति में। महाराष्ट्र की और देश की स्वाधीनता की लड़ाई की दृष्टि से समाचार पत्रों के इतिहास में जो स्थान लोकमान्य तिलक के पत्र केसरी का था, वही स्थान श्री अरविंद और बिपिन चंद्र पाल के वंदे मातरम पत्रिका का रहा। भारत के राष्ट्रवादी समाचार पत्रों में एक महत्वपूर्ण समाचार पत्र बन गया वंदे मातरम। लेखनी भी कई बार तलवार से अधिक धारदार बन जाती है और क्रांति कर दिखाती है।
1: 1906 से 1908 के इस काल में इस समाचार पत्र ने जनमानस को सींचा, लोगों के मन को तैयार किया। इसका श्रेय जाता है श्री अरविंद को। इस अंग्रेजी दैनिक ने युवाओं के मन में तेज उत्पन्न किया। कांग्रेस में गरम दल और नरम दल ऐसे दो गुट हो गए और दिसंबर 1907 का सूरत अधिवेशन भंग हो गया। श्री अरविंद ने 12 अप्रैल 1908 के वंदे मातरम के अंक में लिखा था,
2: विदेशी सरकार के पास याचना विनती करके स्वतंत्रता खरीदी नहीं जा सकती। उसके लिए नौकरशाही से युद्ध करने और रक्त बहाने की तैयारी चाहिए।
0: वंदे मातरम समाचार पत्र के कारण बंगाल में आंदोलन को मजबूती मिल रही थी। उसी दौरान एक सभा में वंदे मातरम इस गीत का उल्लेख करते हुए गुरुदास बैनर्जी ने बंकिम चंद्र को ऋषि बंकिम कहकर संबोधित किया। इस सभा में वंदे मातरम समाचार पत्र से जुड़े हेमेंद्रनाथ घोष उपस्थित थे। गुरुदास बैनर्जी उच्च कोटि के कानूनविद, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उदार शिक्षा के समर्थक तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के रूप में प्रसिद्ध थे। न्यायमूर्ति रानड़े को महाराष्ट्र में जो सम्मान प्राप्त था, वही सम्मान गुरुदास जी को बंगाल में प्राप्त था। सर गुरुदास बैनर्जी जैसे बंकिम चंद्र के समकालीन व्यक्ति और नेता द्वारा बंकिम चंद्र जी का ऋषि बंकिम के रूप में गौरवान्वित किया जाना उनके लिए एक नई बात थी। उन्होंने यह समाचार श्री अरविंद को दिया और तब से श्री अरविंद भी बंकिम चंद्र जी का उल्लेख करते समय ऋषि बंकिम ही कहने लगे। बंकिम चंद्र जी का यह ऋषित्व श्री अरविंद ने ही लोगों के सामने लाया।
1: वंदे मातरम नाम के समाचार पत्र भारत की अन्य भाषाओं में भी निकलने लगे। इसी दौरान पंजाब में पंजाबी भाषा में इसी नाम का समाचार पत्र शुरू हुआ। जनवरी 1908 में हरि रघुनाथ भागवत ने वंदे मातरम नामक पुणे से मराठी समाचार पत्र शुरू किया। इसमें मुख्य रूप से श्री अरविंद जी के वंदे मातरम के चुनिंदा लेखों का मराठी अनुवाद प्रकाशित होता था। श्री अरविंद के विचारों और लेखन का प्रचार करने के लिए ही ये समाचार पत्र चलाया गया था, परंतु आगे चलकर सरकारी दमन के कारण 1909 के मध्य में ये समाचार पत्र बंद करना पड़ा। मादाम कामा और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 10 सितंबर 1909 को यूरोप से वंदे मातरम इसी नाम से समाचार पत्र शुरू किया। उसके संपादक थे लाला हरदयाल। इस मासिक पत्रिका का पहला अंक जिनेवा और रॉटरडम से प्रकाशित किया गया। इसका मूल्य स्वैच्छिक था।

इस पत्रिका के पहले पृष्ठ पर वंदे मातरम ये शब्द समाचार पत्र के नाम के रूप में बड़े अक्षरों में थे और उसके नीचे दो छाया चित्र थे। उनमें से एक था मादाम कामा राष्ट्रध्वज फहराते हुए और दूसरा तलवार उठाकर खड़ी भारत माता। भारत माता के छाया चित्र के नीचे गीता के दूसरे अध्याय का 33वां श्लोक प्रकाशित किया गया था। अथ चेत्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिंच हित्वा पापं वाप्स्यसि। उसी

0: कार उसके संपादकीय के ऊपर भगवान बुद्ध का यह बोध वाक्य था, हे आनंद, तू ही तेरा दीपक है, बाहर आश्रय मत ढूंढ, अपने परिश्रम से ही निर्वाण प्राप्त कर। इस समाचार पत्र के वंदे मातरम शब्दों के नीचे लिखा था, भारतीय संस्कृति का मुखपत्र।
1: लाला हरदयाल ने स्वतंत्र रूप से 1914 में स्विट्जरलैंड से वंदे मातरम नाम का अंग्रेजी समाचार पत्र शुरू किया। 1920 में दिल्ली से लाला लाजपत राय ने हिंदी भाषा में वंदे मातरम पत्र शुरू किया। अमेरिका में बसे भारतीयों ने भारत की स्वतंत्रता के लिए गदर पार्टी के माध्यम से आंदोलन का समर्थन किया। गदर पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह भकना थे। वंदे मातरम ही गदर पार्टी का राष्ट्रगीत था। गदर के क्रांतिकारी करतार सिंह और विष्णु गणेश पिंगले वंदे मातरम कहते हुए फांसी पर चढ़े। सैन फ्रांसिस्को में रहने वाले भारतीयों ने भारत माता संघ शुरू किया और उसके मुखपत्र के रूप में वंदे मातरम खालसा नाम की पत्रिका शुरू की।
0: कुल मिलाकर बंगाल के विभाजन के कारण जो आंदोलन उभरा उससे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक गति प्राप्त हुई। इसी आंदोलन के कारण वंदे मातरम यह युद्ध मंत्र भारतीय जनता को मिला और उसका प्रभाव आगे उभरे प्रत्येक आंदोलन में बढ़ता ही गया। वंदे मातरम ये शब्द मानो यहां के प्रत्येक भारतीय के जीवन का मूल मंत्र बन गए।

आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भ्रम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

0: वंदे मातरम एक जय घोष। अभी आप सुन रहे थे इस लघु रूपक श्रृंखला की 38वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर ममता सिंह, सहभागी कलाकार यूनुस खान, तकनीकी सहयोग किरण बंग, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे और प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
1: कहीं दूर जब दिन ढल जाए,
2: मुकेश के गानों में है सादगी।
3: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल,
2: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
3: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार,
2: हम सबके भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
3: जाऊं कहां बताए दिल।
2: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
4: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
2: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
2: एक गीतकार जिसके गानों के बिना न हमारी सुबह होती है न होती है शाम।
3: ये शाम मस्तानी।
2: एक गीतकार जिसने कुछ गाने खुद भी गाए।
3: दिल इंसान का एक तरह।
2: आनंद बख्शी की यादें बांटेंगे उनके बेटे राकेश आनंद बख्शी।
5: पार्टीशन हुआ ऑगस्ट में, अक्टूबर में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स आर्मी में हैं, तो उनका जो कोड नेम था वो आजाद था।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे 28 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत है जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 27 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पेपर लीक घटना के बाद ढाई महीने में दोषियों की गिरफ्तारी सहित कई कदम उठाए गए। नीट पेपर लीक मामले पर सरकार और सीजेपी के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की वार्ता जारी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण सोमवार तक स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दमनकारी गतिविधियों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा नजरअंदाज किए जाने पर निराशा व्यक्त की। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया और भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि

0: संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे, विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी, कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के निर्णय की सराहना की है। श्री मेघवाल ने मीडिया से कहा कि इन अदालतों में मामलों की सुनवाई प्रतिदिन होगी।
2: प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा को देश के शिक्षा प्रणाली के लिए मील का पत्थर बताया है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह तथा कई अन्य भाजपा नेताओं तथा कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की बातचीत जारी है। ये बैठक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर युवाओं के नेतृत्व में चल रहे विरोध प्रदर्शनों में हुए महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बाद हो रही है। सीजेपी के प्रतिनिधियों सौरभ दास, आशुतोष रांका, अभिजीत दिपके और दीपक बलियान ने सरकार द्वारा उनकी दो शर्तों को स्वीकार करने के बाद वार्ता के लिए सहमति जताई है। ये शर्तें हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी और हाल में हुई परीक्षाओं में अनियमितताओं से प्रभावित विद्यार्थियों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा। संसद के दोनों सदनों में आज लगातार पांचवें दिन नीट पेपर लीक के मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। कई बार के स्थगन के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है।
3: पार्लियामेंट हम लोग चर्चा नहीं करेंगे तो बिल्कुल अच्छा संदेश नहीं जाएगा। मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूं, आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को थोड़ा समझा दीजिए और बाकी कई पार्टीज के एमपीज भी निजी तौर पर सबने अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज पांचवा दिन है, हम इसमें एक अच्छा सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते हैं।
0: सभापति जगदम्बिका पाल ने कहा कि विपक्ष को सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करना चाहिए। इससे पहले नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। दिन में 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला सहित सदन के सदस्यों ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
4: दिनांक 26 जुलाई 2026 को कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के उन वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए अद्वितीय वीरता और अटूट संकल्प का परिचय दिया।
0: करगिल शहीदों की याद में सदन में मौन भी रखा गया। उधर राज्यसभा की कार्यवाही भी इसी मुद्दे पर शोर शराबे के कारण सोमवार तक स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा जारी रखा। दिन में 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन में करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि करगिल विजय दिवस 1999 के करगिल युद्ध में भारत की विजय का स्मरणोत्सव है।
5: On this occasion, this house pays its respectable homage to the gallant martyrs who made

0: The supreme sacrifice in service of the nation. We also express our profound gratitude to all the members of the armed forces.
1: राज्यसभा में भी शहीदों के सम्मान में मौन रखा गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि जब तक शिक्षा मंत्री को पद से नहीं हटाया जाएगा, विपक्ष नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले पर किसी भी चर्चा में हिस्सा नहीं लेगा। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि छात्रों की तीन प्रमुख मांगे हैं, जिनमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी शामिल है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज नई दिल्ली सहित 18 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी, लेकिन नई दिल्ली स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को NEET UG पेपर लीक मामले के बाद सुधारों को लागू करने में हुई प्रगति पर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराध्य की पीठ ने नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हलफनामे में केवल अस्थायी उपायों पर निर्भर रहने के बजाय सुधारों को संस्थागत रूप देने के लिए उठाए गए कदमों का स्पष्ट विवरण होना चाहिए। सरकार ने सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बारे में धमकी भरे बयान देने के वीडियो का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि वीडियो फर्जी है और AI से बनाई गई है। इकाई ने बताया कि श्री गोयल ने प्रदर्शनों के संबंध में ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल लेफ्टिनेंट जनरल राजीव पुरी के एक वीडियो को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस वीडियो को फर्जी और डीप फेक बताया है। वीडियो में दावा किया गया है, जो गलत है, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुरोध पर जनरल पुरी ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के विरोध प्रदर्शनों के बीच राजधानी में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती का आदेश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में 8 स्थानों पर तलाश अभियान चलाया। ये कार्रवाई एक कथित बैंक धोखाधड़ी से धन शोधन मामले के संबंध में की गई है। चेन्नई के पास मधुरंथकम में आज एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। पुडुचेरी से चेन्नई जा रही एक कार की लॉरी से टक्कर के कारण ये दुर्घटना हुई। हादसे के समय पिता और पुत्र सहित 3 लोग चेन्नई हवाई अड्डे जा रहे थे। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की विश्व प्रसिद्ध बहुड़ा यात्रा जारी है। पहंडी अनुष्ठान पूरा हो चुका है और तीनों देवी देवताओं को विधि पूर्वक उनके अपने अपने रथों पर विराजमान कर दिया गया है। अन्य पारंपरिक अनुष्ठानों के संपन्न होने के बाद रथों को खींचने की प्रक्रिया शुरू होगी। एक रिपोर्ट।
2: भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की पहंडी रस्म सफलतापूर्वक पूरी हो गई है और इन भाई बहन देवताओं को बाहुड़ा यात्रा श्री जगन्नाथ मंदिर वापसी की शुभ यात्रा के लिए उनके रथों पर विधिवत विराजमान किया गया है। श्री गुंडीचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक फैली पूरी ग्रांड रोड लाखों भक्तों से खचाखच भरी हुई है। वापसी की यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ मौसी माँ मंदिर पर पारंपरिक रूप से रुकेगा, जहाँ भगवान को पोड़ो पीठा का भोग लगाया जाएगा। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। बुखारेस्ट में भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि प्रस्तावित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता व्यापार निवेश

0: और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देकर आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।
1: इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज एन इम्पोर्टेंट माइलस्टोन इन इंडिया EU स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन आर सेंट्रल टू द कंटेंपरेरी पार्टनरशिप विथ ए कंबाइंड मार्केट ऑफ नियरली 2 billion पीपल एंड एन इकोनॉमिक जोन ऑफ अराउंड $25 trillion। द इंडिया EU FTA इज एमंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक पार्टनरशिप इन द वर्ल्ड।
0: भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित दमन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया को लेकर निराशा जताई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने कहा कि कुछ मामलों में संयुक्त राष्ट्र की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी घटनाओं पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जाता है। ये टिप्पणी पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश के बाद आई है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और दुनिया भर में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है। ब्रेंट क्रूड की कीमतें मई के बाद पहली बार 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गईं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 403 अंक गिरकर 75,989 जबकि निफ्टी 116 अंक गिरकर 23,754 पर पहुंच गया। भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अनाहत ने मिस्र की हबीबा रिस्क को हराया। अब सेमीफाइनल में अनाहत मिस्र की बार्ब समेह से खेलेंगी। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। गुजरात में पिछले 3 दिन से मूसलाधार वर्षा के कारण राज्य में जनजीवन अस्त व्यस्त है। एक रिपोर्ट।
2: दक्षिण गुजरात में 2 दिन तक भारी बारिश के बाद आज उत्तर गुजरात में भी भारी बारिश हो रही है। पिछले 6 घंटों में उत्तर गुजरात के वाउथरा और पाटन जिलों में 6 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। सुबह से अब तक राज्य के 239 तहसील में बारिश हुई है। किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए अहमदाबाद, नवसारी और वलसाड में NDRF SDRF की कुल 49 टीमें और भारतीय सेना की 6 टीमें तैनात की गई है। दूसरी ओर राज्य में भारी बारिश के बीच राहत और बचाव का काम भी जोरों पर चल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पेपर लीक घटना के बाद 2.5 महीने में दोषियों की गिरफ्तारी सहित कई कदम उठाए गए। नीट पेपर लीक मामले पर सरकार और CJP के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की वार्ता जारी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण सोमवार तक स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए। और भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, सदाबहार नगमे।

अमानुष फिल्म का गीत आपने सुना, इंडीवर के बोल थे, श्यामल मित्रा का संगीत था और ये गाना हमने उत्तम कुमार की याद में आपको सुनवाया। आज उत्तम कुमार की पुण्यतिथि है। छोटी सी मुलाकात फिल्म का ये गाना सुनिए, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजी। उत्तम कुमार इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे।

छोटी सी मुलाकात फिल्म का ये गाना हसरत जयपुरी ने लिखा था, संगीत शंकर जयकिशन का था। इंदीवर के बोल श्यामल मित्रा का संगीत।

0: किया है।
1: डॉक्टर विद्या फिल्म का गीत था मुकेश की आवाज में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, संगीत था सचिन देव बर्मन का। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म शहीद से है, गीत संगीत प्रेम धवन का।

ढूंढू मैं कहाँ, हो माँ के बिना हो ना है जहाँ, कौन भला दुनिया में माँ की जगह।

0: बहुत सुंदर गाती हैं भारती आप, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, और संगीत एक ऐसा माध्यम है जो खुद को खुशी देने के साथ साथ औरों में भी खुशियाँ बांटता है।
1: जी दीदी,
0: और आप इतनी सुंदर विधा से जुड़ी हुई हैं, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके साथ में। आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं भारती, ये बताइए हमें।
1: मूवी का नाम है रंग
0: जी,
1: और गाने के बोल है तुमने देखी मेरी आंखें,
0: तुम्हें देखे मेरी आंखें
1: जी,
0: इसमें क्या मेरी खता है
1: जी।
0: बहुत खूबसूरत गीत चुना है भारती आपने, और हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और शुरू करते हैं सखियों के फोन कॉल का सिलसिला। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: कौन सी सहेली हमारे साथ कॉल पर जुड़ी है, नाम बताइए अपना।
1: जी, मेरा नाम मनीषा शर्मा है।
0: मनीषा जी, आपने कॉल कहाँ से किया है हमें?
1: मैं गुलाबी नगरी से बात कर रही हूँ, जयपुर से।
0: जयपुर गुलाबी नगरी, इसे गुलाबी नगरी क्यों कहती हैं बताइए।
1: जी, ऐसा है कि ये जो नगरी है, यहाँ पर जो पुराने घर और जो बाजार मिलता है वो सारा पिंक कलर से पेंटेड है, तो इसलिए इस नगरी को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है।
0: वहाँ सारे बाजार लगभग एक जैसे ही लगते हैं, अगर वहाँ खो जाए तो रास्तों की पहचान का कोई तरीका होता है क्या, बताइए।
1: देखिए, ये जो नगरी है ये बहुत खूबसूरत है।
0: बिल्कुल।
1: और जिस तरीके से ये गुलाबी है, यहाँ के लोग भी बिल्कुल गुलाबी, यानी कि पिंक कलर, जो कि आंखों को बहुत ज्यादा सुकून देता है, एक कामनेस है इस कलर में ना, तो लोग भी गुलाबी रंग की तरह बेहद खूबसूरत और बेहद काम है। तो अगर आप खो जाते हैं तो लोगों की मदद से आपको रास्ते पता पड़ जाएंगे। इसके अलावा हर रास्ते के बाहर उसका नाम जो है वो संगमरमर के पत्थर पर खुदाई करके लिखा गया है।
0: और मनीषा जी, अपने बारे में बताइए कि आप क्या करती हैं?
1: देखिए, मैं एज अ प्रोफेसर कार्यरत हूँ और मैं बच्चों को जर्नलिज्म पढ़ाती हूँ, बैचलर्स और मास्टर्स।
0: क्या बात है।
1: इसके अलावा मुझे किस्सा गोही करने का बहुत शौक है, शायरी करने का शौक है, कविताएं लिखने का शौक है।
0: अभी कोई लिखी हुई आपकी पंक्तियां अगर आपको याद हैं, या कोई शेरो शायरी जो आपने लिखी है, आपकी स्वरचित कोई रचना हम सुनना चाहेंगे।
1: जी, मैं सुनाना चाहूंगी। कभी तो मिलेगी मोहब्बत की मंजिल, ये दिल का मुसाफिर चली जा रहा है तूफान में कश्ती मगर दूर साहिल, ये दिल का मुसाफिर चली जा रहा है।
0: बहुत बहुत सुंदर। और आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मैं फिल्म मैंने प्यार किया से आया मौसम दोस्ती का गाना सुनना चाहती हूँ।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: बताइए, हमारे साथ कौन सी सहेली जुड़ी है इस समय लाइन पर?
1: मैं अलका श्रीवास्तव।
0: अलका श्रीवास्तव जी, आप कौन से शहर में रहती हैं?
1: ग्वालियर के पास एमपी शिवपुरी।
0: शिवपुरी में रहती हैं?
1: जी हाँ जी हाँ।
0: अलका जी, आप क्या करती हैं?
1: मैं हाउस वाइफ हूँ। वैसे पहले मैं टीचिंग जॉब में थी, अब रिटायरमेंट हो गई हूँ।
0: अच्छा, तो रिटायर होने के बाद जो आपका खाली समय है वो कैसे गुजरता है?
1: बस घर के कामों में निकाल देती है, सारा काम होता रहता है।
0: अच्छा, जिन दिनों आप काम किया करती थी, जब आप जॉब पे थी और टीचर का काम करती थी, तो एक शिक्षिका होते हुए क्या आपको समय मिल पाता था रेडियो सुनने के लिए?
1: हाँ बिल्कुल, 4 बजे मैं घर आती थी तो आके घर में बैग रख के सबसे पहले मेरा रेडियो ऑन होता था। हालांकि ये रेडियो से जुड़ा हुआ तो मेरे जन्म के बाद से जो आंखें खोली समझ आ रही हुई तब से जुड़ी हुई है। मेरे घर में रेडियो चलता ही रहता था, बचपन से ही सुना है रेडियो।
0: और आप जैसे श्रोता ही हैं जो इसको और लोकप्रिय बनाते हैं। और आज बताइए अलका जी, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं लाल दुपट्टा मलमल का उसका सुनना चाहती हूँ, क्या करती थी साजना।
0: जी, आपको सुनवाएंगे हम क्या करते थे साजना, तुम हमसे दूर रह के।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो मैडम,
0: हमारे साथ कौन सी सखी इस समय बात कर रही हैं? नाम बताइए अपना।
1: मैं शारदा भोयर बात कर रही हूँ। मुझे मैम शेषनाग फिल्म का गाना सुनना है।
0: शारदा जी, आपकी पसंद का गीत तो हम सुनवाएंगे, लेकिन आप पहले ये तो बताइए कि आप कौन से शहर से बात कर रही हैं हमसे?
1: हम जिला यवतमाल से ही बात कर रहे हैं
0: हाँ, अपने बारे में बताएंगी हमें कि आप क्या करती हैं?
1: मैम। हम तो बस घर का काम करते हैं, हम
0: अच्छा,
1: ब्लाइंड है।
0: अपने आप को खुश
1: गाना
0: रखने के
1: सुनना
0: लिए आप
1: आपका,
0: क्या करती हैं शारदा जी?
1: हमें आप खुश रखने के लिए बस मनोरंजन, गाना सुनना, घर के काम करना
0: अच्छा,
1: यही करती है।
0: घर के काम करने में कभी कोई दिक्कत आती है आपको या आराम से आसानी से हो पाता है आपसे?
1: आराम से हो पाता है मैडम।
0: आप किसी की मदद लेती हैं या खुद से कर लेती हैं सब?
1: नहीं मैम, घर में किसी की मदद नहीं लेती, अनोखी जगह में जाएगी तो मदद लेनी पड़ती है।
0: अच्छा, किस तरह का संगीत सुनना पसंद करती हैं शारदा जी?
1: क्लासिकल गीत, मीडियम गानों का संगीत सुनना पसंद करती हूँ मैम।
0: आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं बताइए, आपकी फरमाइश पूरी करने की हम जरूर कोशिश करेंगे।
1: शेषनाग फिल्म का फेर मिलन के गीत, रे मितवा, प्यार भरे गीतों का मौसम, लेकर आई प्रीत।
0: आपको सुनवाते हैं शेषनाग फिल्म का आपकी पसंद का गाना।

0: हेलो सहेली कार्यक्रम में अब वक्त है एक अंतराल का।
1: कार्यक्रम के प्रायोजक देवदर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक्स कोन्स एवं हवन सामग्री।

0: सखियों अंतराल हुआ पूरा और फिर से हम जुड़ गए हैं अपनी सखियों के साथ। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: हाँ बताइए, आप कौन सी सखी हैं, किन से हम बात कर रहे हैं?
1: मैं युतिका नागर बात कर रही हूँ, जयपुर से।
0: जयपुर से आप बात करिए, अपना नाम फिर से बताएं हमें।
1: युतिका नागर।
0: युतिका नागर, बहुत यूनिक नाम है और ये नाम आज मैं पहली बार सुन रही हूँ, तो मैं जरूर जानना चाहूंगी कि आपके नाम का मतलब क्या होता है।
1: मेरे नाम का मतलब होता है जूही।
0: जूही?
1: जूही एक, हाँ जूही जो पौधा होता है ना।
0: हाँ जी, जूही का फूल बहुत सुंदर होता है।
1: तो वो मेरे नाम का अर्थ है।
0: आपके परिवार में ऐसे कौन से सदस्य थे जिनको संस्कृत की भी जानकारी थी और इतना सुंदर नाम चुन के उन्होंने आपका रखा?
1: देखिए, मेरे परिवार में जो मम्मी, मेरी मम्मी की तरफ की जो लोग रहे वो बहुत ही अच्छे से एजुकेशन लिए थे। उस जमाने में एमए बीएड करे हुए लोग थे।
0: अच्छा।
1: तो उन्होंने ही मेरे नाम का ऐसा उच्चारण लिखवाया कि ऐसा हो कि बहुत यूनिक रहे। कहते हैं ना, नाम से ही आदमी की पहचान होती है। तो मेरा नाम यूनिक रखा और मेरे में कला ही जो कहें, बातें करना, सब चीजें कुछ ऐसी आए जिससे कि मैं यूनिक लगूं।
0: आपका शहर बहुत सुंदर है जिसे गुलाबी नगर कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि इसको गुलाबी नगर क्यों कहते हैं? और जहां तक मैंने जयपुर के बारे में सुना है, इसे किलों की नगरी भी कहते हैं।
1: हाँ, किलों की नगरी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जितने मॉन्यूमेंट्स बने हैं तो यहाँ पे जो राजघराने के लोग थे जो आज भी उसी लेगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उन लोगों के साथ में अगर आप देखते हैं तो उन्होंने इतना अच्छा मेंटेन कर रखा है जिससे कि टूरिस्ट बहुत आते हैं जयपुर में। बहुत टूरिस्ट आते हैं। आप कभी भी जाए तो हवा महल देखो, यहाँ का नाहरगढ़ देखो, यहाँ का जंतर मंतर, यहाँ का सिटी पैलेस, यहाँ के मतलब बहुत ऐसी चीजें हैं जिसको देखने के लिए लोग आते हैं।
0: युतिका जी, आप क्या करती हैं?
1: जी, मैं एक बैंक के साथ काम करती हूँ।
0: अच्छा, किस तरह का काम होता है आपका बैंक से जो आप जुड़ी हैं?
1: फ्रीलांसिंग लोगों के साथ ही काम करती हूँ।
0: काम करते हुए आप समय निकाल पाती हैं रेडियो सुनने के लिए?
1: बिल्कुल, रेडियो के बिना जीवन कहाँ है।
0: रेडियो सुनने का शौक सिर्फ आपको ही है या आपके परिवार में और भी कोई है, और आपको ये शौक कैसे लगा इसके बारे में भी जानना चाहेंगे।
1: मेरी मदर का नाम है उषा नागर। ठीक है, वो बहुत अच्छी अदाकारा रही। उनके यहाँ से ही मान लीजिए कि मुझे जो है इसमें शौक आया कि मैं म्यूजिक सुनू, म्यूजिक गाऊं, मैं खुद गाने लगी, मैं खुद गुनगुनाने लगी। और यूं कहीं किसी को संगीत के लिए चुनना नहीं पड़ा। रेडियो पे गाने सुनकर ही मेरी आवाज जो है, मतलब लोग मुझे कहते थे कि आप गाने कैसे गा लेती हो, कहीं सीखा है? मैं क्या कहूँगी कि रेडियो पे सुनते हैं इतना तो गाना तो आएगा।
0: तो अब हमें भी बड़ी उत्सुकता हो रही है और हम भी चाहते हैं कि आवाज आपकी थोड़ी सी हम सुन लें, और कौन सा गीत गुनगुनाकर हमें बताएंगे आप?
1: जिसकी फरमाइश के लिए मैंने आपको कॉल लगाया है।
0: तो बताइए आपकी पसंद कौन से गीत की है, वही गीत हमें गुनगुनाकर बताइए।
1: महल फिल्म का गाना है।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम। मैम
0: नमस्ते। कौन सी सखी हमसे जुड़ी है कॉल के माध्यम से?
1: मेरा नाम मनीषा प्रजापति है,
0: मनीषा जी, आपने कहाँ से कॉल लगाया है?
1: जलंधर सिटी।
0: मनीषा जी, अपने बारे में
1: मैम
0: बताइए थोड़ा सा कि आप क्या करती हैं।
1: मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: तो पूरा दिन आपका
1: हाँ,
0: किस तरह गुजरता है?
1: घर के काम करके थोड़ा टाइम मिलता है तो थोड़ी बहुत सिलाई कर लेती हूँ, चले
0: ऐसे कौन से
1: जाते हैं।
0: काम हैं जो आपको बहुत खुशी देते हैं, जिन्हें आप बहुत करना पसंद करती हैं?
1: सर मैम खाना बनाना। हाँ जी
0: खाना बनाना ऐसा चीज है जो आपको खुशी देता है?
1: मैम,
0: और आपके पतिदेव को या आपके बच्चों को आपके हाथ का खाना जरूर पसंद आता होगा, तो कौन सी ऐसी चीज है आपकी बनाई हुई जिसकी फरमाइश आपसे सबसे ज्यादा की जाती है?
1: मैडम खीर।
0: तो खीर बड़ी अच्छी बना लेती हैं आप।
1: हाँ जी मैम, मन
0: अच्छा, आप बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म का मैम,
0: मन फिल्म का कौन सा गीत आपको सुनवाए हम?
1: मेरा मन क्या तुम चाहे, मेरा मन, यही मैम।
0: बहुत सुंदर तरीके से आपने गुनगुनाकर बताई है अपनी पसंद। आपको सुनवाते हैं मन
1: थैंक
0: फिल्म का आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते जी, बताइए कौन सी सखी हमसे बात कर रही हैं।
1: मैं सानिया गल से बोल रही हूँ, जिला सहारनपुर के पास से।
0: सानिया जी, अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
1: हम घर में काम करते हैं, घर का ही।
0: घर के कौन से काम आपको करना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है?

0: सबसे ज्यादा तुम्हें खाना बनाना अच्छा लगता है।
1: तो हम कई बार खुशियां ढूंढते हैं तो अपनी पसंद की चीजों में हमें खुशियां मिल जाती हैं। तो आपको अपने रसोई घर में सबसे ज्यादा खुशी मिलती है?
0: मैम मुझे सबसे ज्यादा मीठा बनाने का शौक है।
1: तो कौन सी मिठाई सबसे ज्यादा पसंद की जाती है आपके परिवार में?
0: मैम टुकड़े बनाते हैं हम सूजी के।
1: टुकड़े? किस चीज के टुकड़े बनाती हैं?
0: सूजी के बनाते हैं। सूजी
1: अच्छा,
0: को भूनकर
1: सूजी के टुकड़े बनाती हैं?
0: जी जी मैम। और मैम आटे की भी बना लेते हैं हम मिठाई।
1: आटे की मिठाइयाँ भी बना लेती हैं?
0: जी आटे की भी बना लेती हूँ।
1: तो ये घर की जो बनी मिठाइयाँ होती हैं इनमें कई बार हमें पूरी शुद्धता और पूरे न्यूट्रिशन वैल्यू मिल जाते हैं। तो आटा सूजी ये वो चीज़ें हैं जिनका कोई नुकसान भी नहीं होता, जबकि बाजार में जो मावे की मिठाइयाँ मिलती हैं उनमें कोई भी मिलावट होने की संभावना बनी रहती है।
0: जी मैम।
1: तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने परिवार को अपने हाथों से बनाकर उनका मुँह मीठा करवाती हैं।
0: जी मैम मुझे खुशी मिलती है।
1: अच्छा, और आपको किस तरह का संगीत सुनने में खुशी मिलती है? तो आप जो आज गीत सुनना चाहती हैं वही आपको सुनवाया जाएगा।
0: जी मैम मेरे फिल्म का नाम रहेगा जीने नहीं दूंगा, बोले तुम याद ना आया करो, याद आने से पहले याद आया करो।
1: सानिया जी आपको सुनवाते हैं जीने नहीं दूंगा फिल्म का आपकी पसंद का गाना।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी देव दर्शन धूप अगरबत्ती कौन व हवन सामग्री।
1: और खुश रहने के लिए सबसे पसंदीदा काम कौन सा होता है जो आपको खुशी देता है?
2: मुझे शौक है पढ़ने का, किताब पढ़ने का।
1: किस तरह की किताबें पढ़ती हैं?
2: खुशी के लिए मैं रेडियो सुनती हूँ मैडम।
1: अच्छा, तो यानी कि शौक है आपको किताबें पढ़ने का और अपने आप को खुश रखने के लिए आप रेडियो सुनती हैं। आप किस तरह की किताबें पढ़ती हैं?
2: मैं किताबें हिंदी, इंग्लिश, मराठी सभी पढ़ती हूँ। वो स्टोरी और कोई कथा वेथा होती
1: है। तो जो कहानियाँ आती हैं वो आपको प्रेरित करती हैं?
2: हाँ।
1: और रेडियो पर किस तरह के कार्यक्रम आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं?
2: मैडम सखी सहेली।
1: सखी सहेली आपका पसंदीदा कार्यक्रम है?
2: हाँ, सबसे ज्यादा।
1: सबसे ज्यादा। और उसके हाँ, बाद में और कौन से कार्यक्रम हैं जो सखी सहेली के अलावा सुनना पसंद करती हैं आप?
2: वैसे तो सभी कार्यक्रम सुनते हैं और सभी अच्छे लगते हैं। जैसे वो कहानी आती है सोमवार के दिन, वो कहानी और ये मुलाकात, उजाले उनकी यादों की।
1: अच्छा।
2: सितारे, सभी कार्यक्रम बहुत पसंद है।
1: आपके परिवार में और कौन कौन है?
2: हम दोनों ही।
1: आप और आपके पति देव?
2: हाँ।
1: तो आज आप
2: दोनों ब्लाइंड है मैडम।
1: अच्छा, आप दोनों ब्लाइंड हैं।
2: हाँ।
1: आपके पति क्या करते हैं?
2: वो कुर्सी बनाते हैं, वो ट्रेनिंग की कुर्सी होती है ना,
1: ट्रेनिंग की कुर्सियाँ बनाते हैं वो।
2: हाँ। और वो खत्म होगी तो फिर वो ट्रेन में बिजनेस करते हैं, जैसे कि ऑरेंज गोली, सिंगदाना, मूंगफली वो बेचते।
1: अच्छा, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं जयश्री जी?
2: मैं गाना सुनना चाहती हूँ मदर इंडिया का, वो दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा,
1: जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा,
2: पीना ही पड़ेगा।
1: आपकी पसंद बहुत खूबसूरत है। मदर इंडिया फिल्म का ये गीत आपको सुनवाते हैं।

0: हेलो सहेली,
1: नमस्कार, मेरा नाम चंचल शर्मा है, मैं जयपुर से बात कर रही हूँ।
0: तो आपने बताया आप चंचल शर्मा हैं और इस समय आपकी बात हो रही है चंचल वर्मा से, तो दो चंचल सखियां बात कर रही हैं इस समय।
1: जी
0: चंचल जी, अपने बारे में बताइए।
1: वैसे तो मैं परिष्कार कॉलेज में लेक्चरर हूँ
0: जी,
1: और वैसे रंगमंच भी करती हूँ, राइटर हूँ और रेडियो सुनने का शौक है।
0: मतलब आप तो मल्टीटास्किंग महिला हैं, बहुत सारे काम करती हैं आप, रंगमंच से भी जुड़ी हैं आप, पत्रकारिता भी करती हैं आप, अलग अलग माध्यमों से जुड़ी हुई हैं।
1: जी,
0: इन सब में आपका एक पसंदीदा काम कौन सा है जो आपको सबसे ज्यादा खुशी देता है?
1: मैम मुझे अपनी कविताएं लिखते वक्त रेडियो सुनना बहुत पसंद है।
0: तो अपनी कोई रचना हमें सुनाइए, कुछ पंक्तियां अगर आपको याद हों।
1: जी मैं बिल्कुल सुनाना चाहूंगी। ता उम्र है मुझे सीखना, मेरा सीखना कभी खत्म ना हो, और मुझको तो सब है आ गया, ऐसा मुझे भरम ना हो। मुझे बनना नहीं सागर ठहरा, ठहराओ मौत की निशानी है, मुझे बहती सी एक नदी रखना, जिसका बहना कभी खत्म ना हो, और मुझको तो सब है आ गया, ऐसा मुझे भरम ना हो।
0: बहुत प्रेरणादायक पंक्तियां हैं आपकी और निरंतरता की बात इसमें कही गई है कि कहीं रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है और यही जीवन की सच्चाई है।
1: जी
0: क्योंकि जो थम गया, अगर पानी भी रुक जाता है तो वहां काई जम जाती है।
1: जी और मुझे

0: आऊंगी। कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं हमें ये बताइए, क्योंकि आप तो खुद ही इतनी कविताएं लिखती हैं तो मुझे लगता है आपकी पसंद भी बड़ी अच्छी होगी।
1: मैम, किनारा फिल्म का एक गीत है, नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है घर याद रहे।
0: आपकी आवाज भी बहुत खूबसूरत है और ये हम सभी को याद रहेगी। आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का किनारा फिल्म का।

आज कॉल करने वाली सभी सखियों का धन्यवाद, और वे सखियां जिनका कॉल अभी तक नहीं लगा है वे निराश ना हो, आप जरूर कोशिश करती रहिए, क्या पता अगली बार आपकी ही बारी हो और आपका कॉल कनेक्ट हो जाए। जिन सखियों ने आज हमसे बात की उनसे हमारा अनुरोध है कि अगले 2 महीने तक आप कॉल ना करें, ताकि अन्य सखियों को भी कार्यक्रम से जुड़ने का मौका मिल सके। पुरुष श्रोताओं से हम अनुरोध करते हैं कि मंगलवार के दिन हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग के समय वे कॉल ना करें, इससे लाइनें व्यस्त हो जाती हैं और कॉल कनेक्ट करने में सखियों को परेशानी हो सकती है। सखियों, अब आपसे मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले अंक में। सभी सुनने वालों को हम बता दें कि हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार के दिन सुबह 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए, 400-24-662। एक अन्य नंबर है

0: 9208672888। मुंबई का एसटीडी कोड है 022। नंबर एक बार फिर से बता देते हैं, 4002466622। एक अन्य नंबर है 2867028888। मुंबई का एसटीडी कोड है 022। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग मिला नम्रता टिकोले से। विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम को यहीं समेटते हैं, दीजिए अपनी सखी चंचल वर्मा को इजाजत, नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी, देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, कॉर्न व हवन सामग्री।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कोन्स एवं हवन सामग्री।
2: वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
3: और आ गया।
2: एक और आ गया।
4: कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
6: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की। 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
7: सुनिए।
1: श्रोताओं, FM 102.8 पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का मुंबई केंद्र। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम विद मी योर आरजे चेतन। आजकल के तेजी से बदलते जीवन शैली और खान पान के तरीकों में हो रहे परिवर्तन के साथ साथ स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ रही है। उच्च रक्तचाप और किडनी रोग जैसी समस्या इनमें से कुछ है जो गंभीरता से नजर आ रही है। इस लम्हे प्रोग्राम में हम उच्च रक्तचाप और किडनी रोग के बारे में विस्तार से जानेंगे आपके आरजे चेतन से। यह हाइपरटेंशन किडनी डिजीज कारणों की चर्चा करेंगे और इनके प्रति उचित सचेतता फैलाने का प्रयास करेंगे। हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप भी कहा जाता है, एक आम स्वास्थ्य समस्या है जिसमें रक्तचाप की स्तर मानक से अधिक होता है। ये एक स्थिति है जो धीरे धीरे विकसित होती है और आमतौर पर लोगों को पहले से ही पता नहीं चलता है। अगर यह समस्या नियंत्रित नहीं हो जाती है तो यह दिल, दिमाग, किडनी और अन्य शरीर के अंगों को प्रभावित कर सकती है। उच्च रक्तचाप को अन्यथा हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। यह वह बल है जो मानव रक्त वाहिकाओं की दीवारों के खिलाफ कार्य करता है। ये बीपी रक्त वाहिकाओं के प्रतिरोध पर निर्भर करता है और हृदय को कितना कठिन प्रदर्शन करना पड़ता है। हम में से ज्यादातर लोगों को ये समस्या होती है, लेकिन अनजाने में हम अपनी जिंदगी चला रहे होते। लेकिन अनुपचारित उच्च रक्तचाप से स्ट्रोक, हृदय रोग और कभी कभी मृत्यु हो सकती है। हाइपरटेंशन का मुख्य कारण अंतर्निहित चिकित्सा और मानसिक स्थितियों पर निर्भर करता है। ब्लड प्लाज्मा की मात्रा, हार्मोन गतिविधि, तनाव और गतिविधियों की कमी, क्रॉनिक किडनी रोग, डायबिटीज, ओबेसिटी, स्लीप एपनिया, गर्भावस्था या कुशिंग सिंड्रोम को उच्च रक्तचाप के मुख्य कारण माना जाते हैं। उच्च रक्तचाप को ठीक नहीं किया जा सकता है, ये क्रॉनिक बीमारी है और 90% रोगियों में उच्च रक्तचाप का कारण अज्ञात होता है। इसे दवा के साथ और जीवन शैली और खाने

की आदतों में कुछ संशोधन के साथ नियंत्रित किया जा सकता है। इसे आमतौर पर नियमित चिकित्सा ध्यान देना है और अपने चिकित्सक के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की आवश्यकता होती है। किडनी रोग एक और गंभीर स्वास्थ्य समस्या है जिसमें किडनी की क्षमता मामूला से कम हो जाती है और ये सही तरीके से काम नहीं कर पाती है। इसके परिणाम स्वरूप शरीर में विषैले पदार्थ जमा हो सकते हैं और विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसके कारण ये है दोस्तों, खान पान की गलत आदतें, अधिक नमक, अल्कोहल और अधिक मात्रा में कैफीन का सेवन करने से उच्च रक्तचाप बढ़ सकता है जो बाद में किडनी के लिए भी हानिकारक हो सकता है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। मानसिक तनाव और स्ट्रेस भी रक्तचाप में वृद्धि कर सकते हैं और किडनी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। मधुमेह से पीड़ित लोगों में उच्च रक्तचाप और किडनी समस्याएं होने की संभावना बढ़ जाती है। रक्तचाप और किडनी समस्या आमतौर पर बढ़ती है अनियमित जीवन शैली, डिसऑर्डरली लाइफस्टाइल, अनियमित खानपान, व्यायाम की कमी और अत्यधिक वजन, ये सभी उच्च रक्तचाप और किडनी समस्याओं के लिए प्राथमिक कारण बन सकते हैं। दोस्तों, हाइपरटेंशन और किडनी डिजीज के कुछ लक्षण इस तरह हैं: बार बार पेशाब आना, पेशाब में रक्त आना, थकान, सिर दर्द, नजरों में धुंधलापन, पैरों और एंकल्स में सूजन। तो इसके लिए क्या करें? कम नमक खाएं, कम तेल और सुपर फूड्स का सेवन करें। फल, सब्जियां, पूरे अनाज, मखाने जैसे आहार उच्च रक्तचाप और किडनी स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। योग, ध्यान या साधारण सीखी गई व्यायाम आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकती है। प्रतिदिन 8 से 10 ग्लास पानी पीना महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये आपके रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। नियमित चिकित्सकीय जांच और टेस्ट से आप अपने रक्तचाप और किडनी के स्वास्थ्य की निगरानी कर सकते हैं। उच्च रक्तचाप और किडनी रोग दोनों ही गंभीर स्वास्थ्य समस्या है जिनका समय पर पहचान और प्रबंधन महत्वपूर्ण है। स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम, सही खान पान आदतें बनाना और नियमित चिकित्सकीय जांच से हम इन समस्याओं से बच सकते हैं। साथ ही सचेतता फैलाने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित करना चाहिए ताकि लोग इन समस्याओं की ओर ध्यान दें और सही समय पर कदम उठाएं। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com।

उच्च रक्तचाप एक ऐसी स्थिति है जिसका सही समय पर इलाज किया जाना चाहिए। हालांकि कुछ प्राकृतिक उपचार उच्च रक्तचाप के लिए काम करेंगे, जैसे स्वस्थ बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स, नियमित व्यायाम, अतिरिक्त सोडियम को कम करना, चीनी और रिफाइंड कार्ब्स को कम करना, धूम्रपान बंद करना और शराब का सेवन कम करना। अन्य उपाय जैसे संतुलित आहार खाना, तनाव कम करना, सांस लेने का व्यायाम करना और अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान और योग करना, कैल्शियम और मैग्नीशियम युक्त भोजन का सेवन करना, प्राकृतिक सप्लीमेंट लेना, मुख्य रूप से प्राकृतिक उपचार खाते में गिना जाता है। तो दोस्तों, यह था हाइपरटेंशन और उसके असर अपने किडनी पर। इस प्रोग्राम का उद्देश्य केवल सूचना प्रदान करता है और यह किसी भी प्रकार की चिकित्सा सलाह की जगह नहीं ले सकता है। किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लिए चिकित्सक से परामर्श करें। तो दोस्तों, आज के लम्हे प्रोग्राम में बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी आप सबसे। तब तक चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों। आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाई एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे। यह है विविध भारती का मुंबई केंद्र FM 102.8 पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम पिटारा।

सुधा को नौकरी मिल गई और एक बार फिर वही सब जद्दोजहद शुरू हो गई। वो एक बड़ी कॉरपोरेट फर्म थी जहां हर चीज समय और अनुशासन पर चलती थी। वहां देर से आना सिर्फ गलती नहीं माना जाता था बल्कि लापरवाही समझा जाता था। पहले हफ्ते ही सुधा को ये समझ आ गया था, पर वो भी क्या करती, जैसे पूरी कायनात उसे लेट करवाने पर तुली रहती। कभी जल्दी निकल जाए तो भाई बहन के स्कूल से कोई कॉल आ जाता, या कभी पिता की तबीयत का कुछ ऐसा हाल होता कि उसे देर हो ही जाती। सुधा का बॉस रमेश का स्वभाव बाकी मैनेजर्स जैसा सख्त तो नहीं था, लेकिन वह अनुशासन को लेकर बहुत स्पष्ट था। बहुत कम बोलता था, लेकिन जो कहता था वो सीधा और साफ होता था। एक दिन मीटिंग के दौरान जब सुधा थोड़ी देर से पहुंची तो सभी की नजरें उस पर टिक गई। वो हल्का सा झेपते हुए अपनी सीट पर बैठ गई। मीटिंग खत्म होने के बाद रमेश ने उसे अपने केबिन में बुलाया। सुधा थोड़ी घबराई हुई अंदर गई। रमेश अपनी फाइलों से नजर उठाकर उसे देखने लगा। कुछ पल खामोशी रही, फिर उसने शांत आवाज में कहा, आप देर से क्यों आती हैं मिस सुधा? सुधा ने सिर झुका लिया। सर, घर में कुछ जिम्मेदारियां हैं, कभी कभी समय पर निकल नहीं पाती। रमेश ने कोई प्रतिक्रिया तुरंत नहीं दी, बस उसे देखता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, कंपनी के प्रति भी आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं? ये सुनकर सुधा के चेहरे पर हल्की बेचैनी आ गई। उसने धीमे से कहा, मैं कोशिश कर रही हूं सर। रमेश ने फाइल बंद करते हुए कहा, कोशिश काफी नहीं होती मिस सुधा, नतीजे चाहिए होते हैं। सुधा कुछ नहीं बोल सकी, वो चुपचाप सिर झुकाए बाहर निकल गई। उसने अपनी कोशिशें बढ़ा दी ताकि वो समय पर पहुंचा करे। उसने घर के काम को रात में ही पूरा करने की ठान ली। ऐसा करते करते एक दिन सुधा के उठने का समय हो गया और वो सोने की बजाय काम में ही लग गई। वो ऑफिस भी समय से पहुंच गई। आराम न करने के कारण उसकी हालत जरा खराब होने लगी, पर वो ऑफिस का काम पूरा करती रही। जब ऑफिस की छुट्टी हुई और सुधा बाहर निकली तो उसे अचानक चक्कर आ गया और वो सिर पकड़कर वहीं बैठ गई। ऑफिस से बाहर निकलते हुए रमेश की नजर उस पर पड़ी तो सुधा का हाल जानने उसकी ओर बढ़ गया। सुधा को ध्यान से देखते हुए रमेश ने पूछा, मिस सुधा, आप ठीक हैं? सुधा आवाज सुनकर अचानक उठने की कोशिश करते हुए बोली, जी सर, लेकिन चक्कर के कारण वो ठीक से खड़ी नहीं हो पाई और लड़खड़ा गई। रमेश ने उसे संभालते हुए कहा, अरे संभालिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप गाड़ी में बैठिए, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं सर, मैं बस थोड़ी देर बैठ के चली जाऊंगी। बिल्कुल नहीं, आप चलिए। रमेश ने अपने ड्राइवर को इशारा किया और दोनों ने सुधा को सहारा देकर गाड़ी में बिठाया। सुधा ये मदद लेना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अभी उसकी हालत ही कुछ ऐसी थी कि वो कुछ सोचने या कहने की स्थिति में नहीं थी। कुछ ही देर में रमेश और सुधा डॉक्टर के सामने थे। सुधा की नब्ज देखते हुए डॉक्टर ने पूछा, ठीक से सोती हैं? जी। कितने घंटे? 3-4। बस? और बीती रात? नहीं सो पाई। क्यों, कुछ परेशानी है? सुधा कुछ भी नहीं बोली, लेकिन रमेश समझ गया कि ऑफिस समय से पहुंचने के कारण ही ये नींद नहीं ली गई है। डॉक्टर ने ज्यादा सलाह और कम दवाइयों के साथ उन्हें रवाना किया। रमेश ने बाहर आते ही सुधा से कहा, मिस सुधा, आपको कल आने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, मैं समय से आया करूंगी, आप काम से मत निकालिए। सुधा बेचैन सी उठी। मैं सुधा, आपको सेहत ठीक करने के लिए कल की छुट्टी दी जा रही है, आगे आपको आना है और पूरी कोशिश करना है कि समय पर आना है, लेकिन ऐसे भी नहीं आना है कि अगले दिन छुट्टी ही देनी पड़े। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, ड्राइवर आपको घर छोड़ देंगे। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी, थैंक यू, आपने इतना किया ये भी बहुत है, कहकर सुधा जाने को हुई कि रमेश ने पास से गुजरते एक ऑटो को रोककर सुधा को उसमें बैठने के लिए कहा। सुधा बैठने में हिचकिचाने लगी, क्योंकि ऑटो में घर जाना मतलब फिजूल खर्च। तभी रमेश ने उसके हाथ में 500 का नोट देते हुए कहा, घर तक जाइएगा, ये राइड कंपनी की तरफ से है। हाँ, और जो बच जाए कल वापस कर दीजिएगा। जी सर, सुधा ने इतना ही कहा और ऑटो आगे बढ़ गया। सुधा को अपनी तबीयत अभी से ठीक लगने लगी, क्योंकि उसके मन में एक अच्छा सा एहसास था। दिन रात सभी का ख्याल रखने वाली सुधा ने कभी नहीं सोचा था कि कोई कभी उसका भी ख्याल रखेगा।

एक दिन बाद जब सुधा ऑफिस पहुंची तो उसने रमेश का रास्ता देखना शुरू कर दिया। आज वो समय से जरा ही देर से आई थी। हालांकि अब तो ऑफिस के लोग सुधा को मिस लेट लतीफ बुलाने लगे थे और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सुधा कब आती है। उस दिन रमेश ऑफिस ही नहीं आया और सुधा अपने काम में व्यस्त हो गई। एक दिन ना आने के कारण थोड़ा काम भी बच गया था। वो देर तक रुककर काम करती रही। आधा ऑफिस खाली हो चुका था। देखते ही देखते पूरा ऑफिस खाली हो गया। सुधा को लगा था कि उसका काम आज पूरा हो ही नहीं पाएगा, लेकिन जैसे ही सुधा ने अपना काम 8 बजे पूरा किया कि वो खुशी से चिल्ला उठी और हाथ हवा में उठा के झूमती हुई खुद को शाबाशी देती हुई जोर से बोल उठी, यस शाबाश सुधा, हो गया ना काम। अरे भाई सुधा, तू चाहे तो क्या नहीं कर सकती। सारे लोग जा चुके थे इसलिए सुधा को लगा कि वो ऑफिस के अंदर अकेली ही है। चौकीदार भैया बाहर ही होते हैं इसलिए वो यूं बेफिक्र खुशी से झूम रही थी कि अचानक उसे केबिन के दरवाजे पर खड़ा रमेश नजर आया, जो उसे मुस्कुराता हुआ देख रहा था। सुधा को ऐसे झूमते देखकर वो भी हैरान था और उसके इस बचपने पर

रमेश को हंसी भी आ रही थी। सुधा ने जैसे ही रमेश को देखा वो झेप गई। हड़बड़ी में अपनी चेयर में बैठने की कोशिश में वो गिरते गिरते बची। रमेश ने मुस्कुराते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, अरे अरे मिस सुधा, ये भी क्या आपके विक्ट्री डांस का हिस्सा है? सॉरी सर, मुझे लगा कि ऑफिस में कोई नहीं है। आई एम सॉरी सर। सुधा शर्म से आंखें ही नहीं उठा पा रही थी। रमेश ने हंसते हुए कहा, आज तक तो काम को लेकर ऐसी खुशी किसी भी एम्प्लॉय की नहीं देखी। कीप इट अप। अपने काम को लेकर खुश होने में क्या बुराई है? आप जितना खुश रहेंगे कंपनी भी उतनी आगे बढ़ेगी मिस सुधा। थैंक यू सर। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, रमेश ने गंभीर होकर कहा। जी सर। सुधा ने चौंक कर अपनी आंखें उसकी ओर लगा दी। काम के चक्कर में अपनी नींद कम मत कीजिएगा, क्योंकि आप बाहर सिर पकड़कर बैठने से ज्यादा विक्टर डांस करती हुई अच्छी लगती हैं। रमेश ने मुस्कुराकर कहा तो सुधा ने झेपते हुए शर्मा कर नजरें झुका ली। अब आपको घर जाना है या नहीं? जी सर, बस अभी जा रही हूँ, कहकर सुधा ने सामान उठाया और जल्दी से बाहर निकल गई। रमेश मुस्कुराते हुए उसे देखता रहा। अपना काम पूरा करके थोड़ी ही देर में रमेश भी बाहर निकला। देखा तो तेज बारिश हो रही थी और सुधा ऑफिस के बाहर ही खड़ी हुई थी। आप अब तक नहीं गई? सर मैं छाता भूल गई, थोड़ी बारिश कम हो जाए तो निकलूंगी, सुधा ने बारिश की ओर देखते हुए कहा। मिस सुधा ये लीजिए, कहते हुए रमेश ने अपना छाता आगे किया। पर सर आप भी तो। मैं तो गाड़ी से जाने वाला हूँ, अगर आप कहें तो आपको हम कहीं ड्रॉप भी कर सकते हैं। नहीं सर, इतना ही बहुत है, मैं कल वापस ला दूंगी। और हाँ, आपके उस दिन के 235 रुपये बचे थे तो वो। कहते हुए सुधा ने बैग में हाथ डाला कि रमेश ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं नहीं, वो आप आज जाने के लिए इस्तेमाल कीजिए, ऑफिस में आपने ओवर टाइम किया है तो इतना तो बनता है। सुधा और कुछ कहती इसके पहले ही रमेश गाड़ी की ओर बढ़ गया। सुधा भी छाता खोलकर बारिश का सामना करते घर की ओर निकल चली। अगले दिन ऑफिस की छुट्टी थी और सुधा घर के कामों में लगी थी। उसकी नजर बार बार छाते की ओर जाती और वो पिछले दिन की बातें याद करके मुस्कुरा उठती।

0: सुधा अपनी सोच में गुम थी कि सरला घर से निकलते हुए बोली, दीदी रश्मि के घर से नोट्स लेकर आती हूँ, इसे ले जाऊं, कितना प्यारा है। कहते हुए उसने वही छाता उठा लिया। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये किसी और का है, तू मेरा छाता ले जा। वो टूटा छाता, उसे ले जाने से अच्छा तो मैं भीगती हुई चली जाऊंगी, सरला ने नाराज होते हुए कहा। अरे आज बनवा दूंगी, तू बुरा मत मान। ये ले जाने दो ना, सरला ने जिद की। बिल्कुल भी नहीं, कहकर सुधा ने सरला के हाथ से छाता छीन लिया और ऊपर रख दिया। सरला लूटकर अंदर चली गई और सुधा ने मन ही मन सोच लिया कि अब की तनख्वाह मिलने पर सरला के लिए एक छाता भी ला देगी। पिता दोनों बहनों की बहस देख रहे थे। उन्होंने सुधा को निराश देखकर उदास स्वर में कहा, मैं तेरा घर बसाने की अपनी जिम्मेदारी तो पूरी नहीं कर पाया, उसकी जगह इस घर को चलाने की जिम्मेदारी भी तुझ पे ही डाल दी, माफ करना मेरी बच्ची। अरे पापा आप ऐसा क्यों कहते हैं, आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखिए और जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुधा पिता को समझाकर वापस घर के कामों में लग गई। उसका ध्यान अब छाते से हट चुका था। मन एक बार फिर सवालों की गलियों में भटकने लगा। किसी भी तरह सरला और सौरभ को काबिल बनाना है, जिससे वो खुद अपने पैरों पर खड़े होकर लायक बने। सुधा तो ज्यादा पढ़ नहीं पाई, इसलिए उसके सामने छोटी छोटी नौकरी करने के सिवा कोई चारा ही नहीं था। रोज की तरह अगली सुबह जल्दी उठी और पानी भरने के बाद पिता को दवाई देने उनके पास पहुंची तो पिता का माथा तपता हुआ पाया। वो कराह रहे थे। सुधा घबरा गई, जल्दी से उनका टेम्परेचर और बीपी चेक किया और डॉक्टर अंकल को कॉल किया। उन्होंने कुछ फर्स्ट एड उपचार बताने के बाद 9 बजे क्लिनिक आने के लिए कहा। सरला पिता के पास बैठकर माथे पर गीली पट्टी रखने लगी और जल्दी जल्दी थोड़ा कुछ खाने के लिए भी बना दिया। ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग में सभी को उसी दिन बुलाया गया था। सुधा पापा के डॉक्टर के पास पहुंची। गीतों भरी कहानी ये श्रृंखला जारी रहेगी एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: आप सुन रही हैं पिटारा। इस कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं AISSMS पुणे।

गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे हैं रिद्धि चौरड़िया की लिखी कहानी जिंदगी की यही रीत है। आइए सुनते हैं आगे की कहानी। सुधा पापा के डॉक्टर के पास पहुंची, वहां उन्हें दिखाकर दवा लेकर उन्हें घर छोड़ने आई। फिर सरला को पापा के पास बिठाकर जल्दी ऑफिस भागी। पड़ोस की संजना दीदी को हिदायत दी कि वो भी बीच बीच में देखते रहें और कोई भी बात हो तो तुरंत कॉल कर दें। ऑफिस पहुंची तो वो आज 2 घंटे लेट हो चुकी थी। रमन ने उसे देखते ही कहा, सुधा आज तो रिकॉर्ड ही बना दिया, बॉस में मिलने के लिए कहा है। अपना सामान डेस्क पर रखकर सुधा सीधे रमेश के केबिन में पहुंची। रमेश काम में व्यस्त था, उसने सुधा को बैठने का इशारा किया। इस चुप्पी ने तो सुधा की जान ही निकाल दी थी। रमेश ने अपना वो काम पूरा किया और पूछा, आज इतनी देर क्यों? सर पापा की तबीयत, कहते हुए सुधा का गला रूंध गया और वो आगे कुछ ना बोल सकी। तो आपने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया?

आप जानती हैं कि आप इन्फॉर्म करके घर पर रह सकती थीं, पर आपने 2 घंटे बाद ऑफिस आना चुना, लेकिन एक छोटा सा फोन कॉल करना ठीक नहीं समझा, क्यों? सर, मैंने सोचा कि संभाल लूंगी, सुधा ने रूंधे स्वर में ही कहा। क्या संभाल लेंगी आप? ना आप फोन उठा रही हैं, ना आप कुछ बता रही हैं, आप अक्सर देर से आती हैं, हमें आदत है, लेकिन इतनी देर, भगवान ना करे, लेकिन अगर आपको रास्ते में कुछ हो जाता, मान लीजिए उस दिन की तरह चक्कर आ जाता, तो पता कैसे चलता? हम तो यही सोचेंगे कि आप देर से आती हैं और घर के लोग सोचेंगे कि आप ऑफिस में हैं। जानती हैं पिछले 1 घंटे से मैं कितनी टेंशन में हूं, आप फोन भी नहीं उठाती हैं। सब कुछ अकेले संभालने की जरूरत नहीं होती है मिस सुधा, हम सब हैं। सुधा कुछ नहीं बोली, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। आखिर वो बस इतना ही बोल पाई, सॉरी सर। डॉक्टर ने क्या बताया है? रमेश ने पूछा तो सुधा ने सारी बात उसे बता दी। रमेश ने उसके सामने एक फाइल रखी और कहा, आप इस प्रोजेक्ट में मेरी टीम में हैं, मीटिंग दोपहर में है, तब तक पढ़ लीजिए, कोई भी सवाल हो तो मीटिंग में पूछिए। सुधा ने फाइल उठाकर हां में सिर हिलाया और बाहर जाने के लिए पलटी कि रमेश ने पूछा, आप सैंडविच खाती हैं? जी, सुधा ने सवालिया लहजे में पूछा। ठीक है, चाय या कॉफी? सर, मिस सुधा, मेरी टीम का फिट होना भी मेरे काम का हिस्सा है, कुछ सीखिए राघव से, ऑफिस फंड से ही रोज नाश्ता करता है। सुधा ने जब आश्चर्य से रमेश की ओर देखा तो रमेश ने मुस्कुराकर हां में सिर हिलाया और उसकी मुस्कान से सुधा के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। बाहर निकलकर भी सुधा के चेहरे पर वो मुस्कान कायम रही।

सुधा की तरह ही समय भी पंख लगाकर ही उड़ रहा था। अब सुधा घर के साथ साथ ऑफिस के काम को भी सहजता से संभालने में जुटी रहती थी। ऑफिस उसे अब अच्छा लगने लगा था। उसकी नजरें ऑफिस में रमेश को ही ढूंढा करती, लेकिन वो सामने आता तो सुधा घबरा जाती। सुधा रमेश के प्रोजेक्ट में जी जान से जुटी थी। रमेश सुधा को हिदायत दिया करता कि वो काम में मदद ले लिया करे, लेकिन सुधा की तो आदत थी कि वो सब कुछ अकेले ही संभालना चाहती। रमेश ने सुधा को प्रेजेंटेशन की जिम्मेदारी भी सौंप दी थी। रमेश और सुधा इस प्रोजेक्ट के कारण काफी समय साथ ही बिताते। एक रोज घर से टिफिन लाते हुए सुधा रमेश के लिए भी खाना ले आई। जब लंच टाइम में रमेश के सामने उसने उसका टिफिन रखा तो रमेश आश्चर्य से उसे देखने लगा। सुधा ने कुछ कहा नहीं, बस मुस्कुराकर चल दी। रमेश ने टिफिन वापस देते हुए उसे यही कहा कि बहुत दिनों बाद घर का खाना खाया, थैंक यू। प्रोजेक्ट के सिलसिले में ही रमेश और सुधा एक रोज मीटिंग में गए तो लौटते वक्त वहां पास ही सागर के किनारे टहलने लगे। रमेश से बातों बातों में सुधा ने पूछा, सर आपको घर का खाना इतना पसंद है तो आप लाते क्यों नहीं? क्योंकि घर में कोई है ही नहीं। सुधा ये सुनकर कुछ बोल नहीं पाई। उसने बैग से निकाल कर अपना टिफिन रमेश के हाथ में दे दिया। आज देने से क्या होगा, रोज लाओ तो बात है, कहते हुए रमेश समुद्र के किनारे ही बैठकर टिफिन खोलकर खाने लगा।

सुधा उससे आश्चर्य से देखती हुई बोली, सर आपको ऐसे खाते हुए देखने के लिए तो मैं रोज ला दूंगी। ये कहकर सुधा हंस पड़ी। तुम्हें ऐसे हंसता देखने के लिए मैं रोज ऐसा कर सकता हूँ, रमेश ने सुधा की ओर देखते हुए संजीदा होकर कहा। सुधा ने नजरें झुका ली। दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा था, जिसे दोनों समझते थे और इशारों में कह भी दिया करते थे, लेकिन बात खुलकर कोई भी नहीं कर रहा था। पर अब रमेश ने सोच लिया कि वो सुधा को अपनी जिंदगी में पूरी तरह शामिल करना चाहता है और उसने इसके लिए तैयारी भी कर ली थी। उसने ठान लिया कि अगले ही दिन वो सुधा से अपने दिल की बात कह देगा।

अगले दिन जल्दी ऑफिस आकर रमेश सुधा का इंतजार करने लगा। न सुधा आई न उसका फोन लगा। चंदन ने बताया कि सुधा ने छुट्टी ली है। रमेश बेचैन सा रहता, लेकिन उसे लगा कि सुधा के साथ इतना कुछ लगा रहता है कि क्या किया जा सकता है। हफ्ते भर बाद चंदन ने बताया कि सुधा ने ऑफिस में काम छोड़ने की अर्जी दे दी है। रमेश को तो कुछ समझ ही नहीं आया। चंदन ने साथ आया एक खत भी रमेश को दिया। जब रमेश ने खत खोला तो उसमें लिखा था, सर इंसान चाहता क्या है और होता क्या है। आपसे एक छोटा सा वादा किया था कि आपके लिए रोज टिफिन लेकर आऊंगी, लेकिन ये भी नहीं कर पाऊंगी। मैं अपने परिवार के साथ मुंबई से बाहर जा रही हूं। पिताजी ने मेरी शादी तय कर दी है। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि ना कुछ कह पाई ना समझ ही पाई। पर अच्छी बात यह है कि जिनसे शादी हो रही है वो पापा के साथ साथ सरला और सौरभ को भी साथ रखने के लिए तैयार है। कम से कम इन दोनों का भविष्य अच्छा हो जाएगा। कुछ बन जाएंगे तो अपने मन की कर पाएंगे, वरना परिस्थिति कहां किसी की सुनती है। माफ कीजिएगा, मिलने नहीं आ पाई। बस यही तमन्ना है कि आपके घर में कोई आ जाए जो आपको रोज टिफिन बनाकर दे। आप ये कोशिश कीजिएगा, सुधा। रमेश की आंखों से आंसू बह निकले। काश उसने सुधा से अपने दिल की बात पहले ही कह दी होती। काश वो उसके पिता से ही बात कर लेता, वो भी तो उसके परिवार को अपनाना चाहता था। पर अब इतनी देर हो चुकी थी। रमेश के मुंह से केवल इतना ही निकला, सुधा तुमने कम से कम मुझे इतना अपना तो समझा कि मेरी खुशियों को भी अपनी खुशी मानकर अपने साथ ही निछावर कर दिया।

0: पास इतना भी न आइए कि सितारे देखते हैं, ये मोती सी चमक, ये पायल की खनक, क्या सोचकर ये रात आई है, ये हुस्न की कारीगरी, ये आंखों की जादूगरी, मोहब्बत के तिलस्म में गिरफ्तार, काश ये सारा जहां होता, कुछ होता न होता, प्यार में ये मुमकिन होता।
1: पास बैठो तभी

दिल धड़कता है, दो घड़ी तो बैठ जाइए, न जाइए दूर कि जी घबराता है। दिल अपना था आपसे लगा बैठे, राज दिल आपसे सुना बैठे। कुछ आपने भी छुपाया है, कहिए न कहिए, कलियों के दिल को धड़काया है आपने, कहिए कि न कहिए। जाने बातों से बहलाते क्यों हैं, सच कहते नहीं कि हाँ हमने भी मोहब्बत की है, रात हमने भी तन्हाइयों में बसर की है।

से न खेलिए, ये नाजुकी की बात नहीं, जो इसको छेड़ा तो बारहा मचल जाएगी। पास आइए न फेरिए ये नजरें करम, दिल आपका है यकीन मानिए कि न मानिए। न देखो इधर ऐ शब के तारों, जरा छुप जाओ, चिराग हुस्न से आ रही है रोशनी थम थम।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं छाया गीत। बादलों से बरसते बूंदों के मोती जा अटके हैं उनकी जुल्फों में, भीगते शानों पे कभी ढलते कभी आंचल में सिमट जाते हैं। ये बूंदों की खुशनसीबी कुछ ठहरी कुछ ढल गई, कुछ टूट कर लबों को भिगो गई। संदली रात में बारिशों का रंग चढ़ता गया, लम्हा लम्हा उनके रुखसार का रंग गुलाबी होता गया।

काश ये रात थम जाए, बादलों से बूंदों का आशियां लरस जाए, इश्क हुस्न के दरमियां न रहे आज कोई फासला, पर्वतों से टूट के देखो काली घटा बरसती है, न पूछिए हमसे कि बारिशों से भी आग बरसती है।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, तराने नए पुराने। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने नए पुराने।
1: तराने नए

इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत लता मंगेशकर और मुकेश के गाए इस गीत के साथ। फिल्म का नाम है सन्यासी।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत सुनिए, स्वर मोहम्मद रफी का, फिल्म का नाम पत्थर के सनम।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
4: सुनिए।

फिल्म शहीद का गीत अभी आपने सुना, स्वर लता मंगेशकर और साथियों के थे। गीतकार और संगीतकार थे प्रेम धवन। रवि के संगीत निर्देशन में हम आपको साहिर लुधियानवी का लिखा गीत सुनवा रहे हैं। आवाज मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम है अमानत।

यह आवाज थी मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम था अमानत। गीत को लिखा था साहिर लुधियानवी ने और धुन बनाई थी रफी ने।

0: जब दिन ढल जाए।
1: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
1: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
2: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार।
1: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
2: जाऊं कहां बताए दिल।
1: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
3: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
1: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
4: वर्मा मलिक का लिखा गीत सुनिए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, आवाज़ लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है रोटी कपड़ा और मकान।

0: तराने नए पुराने कार्यक्रम का शेष भाग हम आपको सुनवाएंगे हिंदी में समाचारों के बाद संध्या 6:05 पर। इस समय संध्या के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। सूत्रों ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में घोषणा की थी कि पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। इस बीच संसद परिसर में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी CJP के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक के दौरान परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी पार्टी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
2: लगभग 2 घंटे चली सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
0: इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल CJP के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर सहमति दे दी है।
3: मांग से 3, उनमें से 2 सरकार पॉजिटिव है।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार 5वें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे सदन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। उधर लोकसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। इससे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंतकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को 1,264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। आज नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।
4: आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की 3rd और 4th लाइन, और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए

0: बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया। बुखारेस्ट में भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उससे जुड़ी घटनाएं भारत के लिए गहन चिंता का विषय हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि संघर्ष शुरू होने के बाद से ही भारत संघर्ष में शामिल पक्षों अमरीका और ईरान के साथ साथ अन्य क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय वार्ताकार के साथ लगातार संपर्क में है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। तराने नए पुराने का शेष भाग सुनिए।

0: मुकेश की आवाज में अभी आपने फिल्म पूरब और पश्चिम का ये गीत सुना। गीतकार इंदिवर थे और धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने।
1: एक गीतकार जिसके गानों के बिना न हमारी सुबह होती है न होती है शाम। एक गीतकार जिसने कुछ गाने खुद भी गाए।
2: दिल इंसान का एक
1: आनंद बख्शी की यादें बांटेंगे उनके बेटे राकेश आनंद बख्शी।
3: पार्टीशन हुआ ऑगस्ट में, अक्टूबर में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स आर्मी में हैं, तो उनका जो कोड नेम था वो आजाद था।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 28 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

और आइए अब सुनते हैं फिल्म शोर का गाना आवाजें मन्ना डे महेंद्र कपूर और साथियों की। गीत को राजकवि इंद्रजीत सिंह तुलसी ने लिखा और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बनाई।

0: ये है विविध भारती।
1: विविध भारती देश का रेडियो।
2: ओ मेरे पिया दे रंगून किया है वहां से टेलीफोन।
3: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर।
1: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
5: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब एंड नरगिस जी।
3: विविध भारती पर हर पल है खास।
1: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
6: आज के फनकार।
3: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
6: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
1: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।
3: और अब सुनिए किशोर कुमार की आवाज, फिल्म का नाम अमानुष, गीत रचना इंदिवर की और संगीत श्यामल मित्रा का।

किशोर कुमार की आवाज थी फिल्म अमानुष के लिए। कार्यक्रम का अगला गीत दिलीप सेन और समीर सेन के संगीत निर्देशन में समीर का लिखा हुआ, युगल स्वर लता मंगेशकर और कुमार सानू के, फिल्म का नाम है ये दिल लगी।

लता मंगेशकर और कुमार सानू को आपने सुना। फिल्म का नाम था ये दिल लगी। और ये है इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। जतिन ललित की धुन, समीर की गीत रचना, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज, फिल्म का नाम वास्तव।

0: इस गाने के साथ ही आज का तराने नए पुराने ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: तराने नए पुराने।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। जरोखा में सुनिए हमारे आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। पहले सुनिए हमारी इस सभा में शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से थोड़ी देर बाद में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे संध्या रंजन, 6:45 पर संगीत सरिता, 7:00 फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला, 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत अनमोल यादें, फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर से जयंत पत्रिकर की बातचीत का भाग 4। प्रस्तुत करता है जुबैर खान। आज रात्रि 8:00 हवा महल में आप सुनेंगे हास्य नाटिका बहादुरी, लेखक राधेश्याम अग्रवाल और निर्देशक बिजेंद्र मोहन। चित्रलोक का प्रसारण समय रात्रि 8:15 और रात्रि 9:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके लिए। आज रात्रि 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम होगा और ये कार्यक्रम फिल्मकार मनोज कुमार पर केंद्रित होगा। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे छाया गीत, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। ढलती जाए रात का प्रसारण होगा रात्रि 10:30 पर और 11:00 आप सुनेंगे रंग तरंग का पुनः प्रसारण। ये थे आज के शेष कार्यक्रम और अब सुनिए हमारे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का लेखा जोखा। कल सुबह 6:05 पर आप सुनेंगे वंदनवार और चिंतन, 6:35 पर श्री रामचरित मानस गान का 260वां भाग। संगीत सरिता कार्यक्रम में कल सुबह 6:45 और कल संध्या 6:45 पर आप सुनेंगे श्रृंखला घुंघरू की तरह, कलाकार गायक संगीतकार रविंद्र जैन, इसका भाग 5 प्रसारित होगा, प्रस्तुतकर्ता रूपाली रूपक। कल सुबह 7:00 हमारा दैनिक कार्यक्रम भूले बिसरे गीत और 7:30 पर आप सुनेंगे हम हैं राही प्यार के। त्रिवेणी का प्रसारण समय कल सुबह 8:15 और दोपहर 2:00 आलेख और स्वर ममता सिंह का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। कल सुबह 8:30 पर और कल रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रलोक, 9:30 पर यानी कल सुबह 9:30 और कल रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम होगा आज की फनकार और ये कार्यक्रम संगीतकार जीएस कोहली पर केंद्रित होगा। आलेख और स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। कल सुबह 10:00 आप सुनेंगे गीतों भरी कहानी, कहानी होगी जिंदगी की यही रीत है, लेखिका रिद्धि चौरड़िया, वाचन और संपादन नेहा शर्मा का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।

कल दिन में 11 बजे चित्रपट संगीत 11:30 पर मैटिनी शो में आप सुनेंगे जल है तो कल है, इस विषय पर पर्यावरण विशेषक शुभजीत मुखर्जी से यूनुस खान की बातचीत का भाग दो। संपादन सहयोग रीमा जोशी का, प्रस्तुत करता है जुबैर खान। कल दोपहर 12:05 पर यादों की महफिल, दोपहर 1 बजे सुरीला सफर, 2:30 पर सदाबहार नगमे और 3 बजे फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम होगा मन चाहे गीत। नाट्य तरंग में कल दोपहर 3:30 पर आप सुनेंगे नाटक वो मंजिल कहाँ, लेखक डॉक्टर रणवीर सक्सेना, निर्देशक स्वतंत्र कुमार ओझा। बॉम्बे टॉकीज में कल दोपहर बाद 4 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीतकार दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की गई बातचीत का भाग पहला, प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। कल संध्या 5 बजे छाये गीत का पुनः प्रसारण और 5:30 पर आप सुनते हैं दैनिक कार्यक्रम तराने नए पुराने। विशेष जयमाला कार्यक्रम कल संध्या 7 बजे प्रसारित होगा और ये कार्यक्रम पार्श्व गायक अनूप जलोटा पर केंद्रित होगा, यानी इस कार्यक्रम को पेश करेंगे अनूप जलोटा। कल संध्या 7:45 पर आप सुनेंगे जिज्ञासा, रात्रि 8 बजे हवा महल में सुनो कहानी पिसन हारी का कुआं भाग एक, मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, वाचक स्वर अमरकांत दुबे का, प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई। छाये गीत का प्रसारण कल रात्रि 10 बजे आलेख और स्वर आरती श्रीवास्तव का, प्रस्तुतकर्ता होंगे राघवेंद्र सिंह नेगी। झरोखा में अभी आप सुन रहे थे हमारे आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण और अब संध्या रंजन।

अभी आपने वाणी जयराम और साथियों को सुना। फिल्म का नाम था गुड्डी, गीतकार गुलजार थे और संगीतकार थे वसंत देसाई।

पंडित भरत व्यास के बोलों को संगीत से सजाया वसंत देसाई ने, आवाजें लता मंगेशकर और साथियों की थी, और ये फिल्म थी दो आंखें बारह हाथ। इसके साथ ही आज का संध्या रंजन कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

0: घुंघरू की तरह कार्यक्रम की इस श्रृंखला में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सिने जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार और गायक रविंद्र जैन से प्रसिद्ध लेखक और गीतकार राजेश जौहरी की बातचीत। प्रस्तुत है इस श्रृंखला की चौथी कड़ी।
1: प्यारे दोस्तों, तो आज हम फिर हाजिर हैं। दादा का एक बार सत्कार करता हूँ। नमस्कार दादा। हमने कई रागों के बारे में बातचीत की, आपने रागों के बारे में बहुत कुछ बताया और ऐसे रागों के बारे में बताया जिसमें आपने फिल्मी गाने निबद्ध किए और वो बहुत मकबूल हुए। आज उसी शास्त्रीयता को बरकरार रखते हुए, उसी सिलसिले को जारी रखते हुए, हम फिर शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय गीतों के बारे में, शास्त्रीयता के बारे में और फिल्मी गीतों के बारे में आपसे सुनेंगे।
2: एक प्राइमरी राग जिसको हम यमन के नाम से जानते हैं, उसमें बड़ा अच्छा अच्छा काम किया है हमारे सारे कंपोजर्स ने। ख़ास तौर से रोशन साहब ने बहुत अच्छे अच्छे गाने बनाए और मदन जी ने बड़ा अच्छा गाना बनाया, जिया ले गए मेरा सांवरिया, है ना
1: जी। जी
2: रोशन साहब के तो
1: बहुत गाने, उन्होंने
2: बहुत गाने,
1: यमन ने बहुत काम किया है।
2: मेरा भी ये गीत लोगों ने बहुत पसंद किया है।

0: दादा, जैसे कि हर संगीतकार के अपने कुछ पसंदीदा राग होते हैं, आपकी शास्त्रीय संगीत की जो चादर है बहुत बड़ी है और उसमें न जाने कितने गीत समा गए बड़ी सुंदरता से, बड़े अच्छे ढंग से, तो आपके भी कुछ राग ऐसे होंगे मखसूस खास राग जो आपको बहुत पसंद होंगे और मौका मिलते ही आपने उन रागों पर या उसी एक राग पर गाने बनाए होंगे, उसके बारे में कोई विवरण दें।
1: यूँ तो हर राग बहुत अच्छा सजाया है हमारे बुजुर्गों ने
0: जी,
1: उनकी उन पर बलिहारी है जिन्होंने ये राग कंपोज किए हैं, जिनको जिनको सोचा है।
0: क्या कहने,
1: हम लोग तो उसका इस्तेमाल भर करते हैं, वो भी मैंने आपसे जैसे अर्ज किया
0: जी
1: कि अपनी आत्मा अगर उसमें डाल दें तो कोई बात बन जाती है
0: जी।
1: वैसे राग वो जिसमें अनुराग हो, मसल राग सबसे अच्छा राग है।
0: क्या कहने, वाह।
1: तो और हमारे शास्त्रों में कहा है कि रंजको जन चित्ता नाम सराग कथितो बुधा, जो चित्त का रंजन करे, उसकी परिभाषा ये है।
0: बहुत सुंदर।
1: ऐसे मुझे माइनर कॉर्ड्स के राग जो है ना जोर्स के पसंद है ज्यादा।
0: जैसे
1: बहुत सारे उसमें है, कई कई राग जो इस तरह के हैं ना जो माइनर नोट्स में है, भैरवी थाट के बहुत सारे राग हैं, भैरव थाट के अपने राग जो है ना
0: जी
1: बड़े अच्छे अच्छे हैं, उधर पूर्वी थाट के राग हैं, वो सब बड़े सुंदर सुंदर राग, उनकी उनमें एक अजीब उसमें एक आकर्षण है और एक ठहराव है
0: जी।
1: लेकिन अब फिल्मों में चूंकि हमें न्याय करना पड़ता है चरित्रों के साथ,
0: हाँ सिचुएशंस की भी हाँ। अपनी दरकार होती है, लेकिन आप कोई ऐसा गीत सुनाइए जो आपने शास्त्रीय संगीत पर आधारित किया हो और आपको पसंद हो।
1: आशा जी ने मेरे गीत गाया, वो आजकल बहुत लोग उसको सारे तमाम कलाकार गाना चाहते हैं।
0: वाह, जरूर।

0: सही बात है। आजकल शास्त्रीय संगीत के बारे में लोगों का, गायकों का, कलाकारों का ये कहना है कि कोई ज़रूरत नहीं है शास्त्रीय संगीत सीखने की, और जैसा गाना मिला है सिनेमा के सिचुएशन पर गा दिया जाए। तो उन गानों की उत्पत्ति को आप कितना महत्व देते हैं जो बिना शास्त्रीय संगीत की जानकारी के बने बनाए और गाए जाते हैं?
1: मैं भी उसी
0: क्षेत्र में है,
1: उसी मतलब इंडस्ट्री को बिलोंग करता हूँ। और लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि उम्र जो है ना वो हर एक की अलग अलग है
0: जी,
1: है ना
0: जी।
1: किसी की 100 वर्ष है, किसी की 50 है, किसी की 20 है
0: जी जी,
1: है ना
0: जी जी।
1: तो इसी तरह गानों की भी आयु जो है ना वो इतनी सीमित हो जाती है कि वो आए गए कब, आए कब चले गए
0: पता ही नहीं चलता।
1: हाँ, बाद में ये लगता ही नहीं कि ये गाने भी हैं।
0: सही बात है, बिल्कुल सही बात।
1: गाना नहीं लगता, वो कुछ और ही लगता है।
0: कुछ देर के लिए लगता है, कोई तराना सा उठा फिर कहीं जाके दब गया।
1: हाँ ठीक है बस, मगर ये है कि जब प्रसिद्धि जिसको मिल जाती है, जो चीज़ पसंद लोगों ने कर ली है, लाखों लोग करोड़ों लोग जिसको गाते हैं
0: जी,
1: उसको ख़राब कहना भी मुश्किल है।
0: हाँ बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ये कि शास्त्रीय संगीत की जानकारी नितांत आवश्यक है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: करना है, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। चलते चलते आज की इस कड़ी में कोई एक और गीत आपका ही निर्मित किया हुआ किसी शास्त्रीय राग पर।
1: मैं एक ऐसी रचना प्रस्तुत करना चाहता हूँ जिस रचना पर फिल्म बनाई गई। श्री राज कपूर जी ने ये गीत सुना और इस पर कहानी सोची, इसके आधार पे कहानी का ताना बना हुआ। ये गीत राग किरवानी में निबद्ध है। मैंने कोशिश की है कि राधा और मीरा दो चरित्र हैं इस गीत में, दोनों के साथ न्याय करूं। साहित्यिक पक्ष भी इसका अच्छा बन पड़ा है।

0: घुंघरू की तरह इस श्रृंखला में आज आपने सिने जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार और गायक रविंद्र जैन से प्रसिद्ध लेखक और गीतकार राजेश जौहरी की बातचीत सुनी।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूप

मुंबई गेंद स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जो कि हमारे मुंबई केंद्र से प्रसारित किया जाएगा।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: कटपड़े, घटना स्वयं ही घटपड़े। भारतीय सेना,
1: भारतीय सेना। अभी आप सुन रहे थे ये गीत, गीतकार संगीतकार और मुख्य स्वर कैलाश खैर का था। जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

यह आवाज है आशा भोसले की। फिल्म का नाम है खुशबू। गीत रचना गुलजार साहब की और धुन राहुल देव बर्मन की है।

0: आंखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आंखें।
0: आंखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 27 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आंखों में इशारा हो गया।
3: शंकर जयकिशन का संगीत, शैलेंद्र की रचना, आवाज मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम है एन इवनिंग इन पेरिस।

धरती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

आशा भोसले को आपने सुना, फिल्म का नाम था कस्मे वादे। गीत रचना गुलशन बावरा की थी और तर्ज राहुल देव बर्मन की थी।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था दो झूठ, गीत एमजी हशमत का था और धुन शंकर जयकिशन की थी। हम आपको बताना चाहेंगे बॉम्बे टॉकीज में कल दोपहर बाद 4 बजे आप सुनेंगे फिल्मी दुनिया के जाने माने संगीतकार दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। और ये है इस कार्यक्रम की आखिरी गीत रचना, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की फिल्म त्रिशूल के लिए, शब्दकार साहिर लुधियानवी, धुन खयाम साहब की।

0: अनमोल यादें। अनमोल यादें।
1: नमस्कार श्रोताओं, अनमोल यादें कार्यक्रम के इस चौथे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है और स्वागत है जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर जी का। राजीव साहब बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू, नमस्कार।
1: अब पिछले एपिसोड में हमने कुछ नए फिल्मों की बात की थी, तो आज भी क्या नए फिल्मों के बारे में ही हम जानेंगे?
2: जी हाँ, नए फिल्मों में भी ऐसे गाने जैसे मैंने कहा था कि काफी है, क्योंकि म्यूजिक कंपनीज का रोल भी था इसमें।
1: जी जी,
2: ये एक गाना जो हमने चुना है आज वो फिल्म हासिल का है।
1: अच्छा।
2: और ये हासिल की एक सिचुएशन है जो फिल्म में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रूशियल सिचुएशन है, जहाँ पे ये सूफी गाना एक दरगाह में बज रहा है।
1: अच्छा।
2: इसके गायक है रूप कुमार राठौड़ और जावेद अली, और इसके जो बोल है वो इसरार अंसारी ने लिखे हैं। बड़ी ही खूबसूरत कंपोजिशन है जतिन ललित की। तू ही तू, तू ही तू मैं पेश करना चाहूंगा इस गाने को।

0: क्या बात है। हासिल फिल्म का ये सूफियाना कलाम जो इसरार अंसारी साहब का लिखा हुआ था हमने सुना, और अब हम किस गीत की ओर बढ़ रहे हैं राजीव साहब?
1: अब हम उस गीत की तरफ बढ़ेंगे जो देखिए 2005 में एक जहर करके फिल्म आई थी
0: हाँ।
1: जो थोड़ी बहुत चली भी थी। उसके गाने अगर तुम मिल जाओ और वो लम्हे बहुत
0: जी
1: सुपरहिट
0: जी
1: हुए थे।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और इसमें एक ऐसा गाना था जो मेरे लिए बहुत पसंदीदा है और बहुत ही सोलफुल जिसे कहते हैं गाना
0: हाँ
1: है।
0: हाँ
1: और ये केके ने गाया था जिसकी तुलना मैं तो बड़े सिंगर्स के साथ करना चाहूंगा, क्योंकि अगर कोई सिंगर इस जनरेशन में था जो उस लेवल पर पहुंच सकता था वो था के।
0: जी जी
1: ये तो
0: बिल्कुल।
1: कोइंसिडेंस है कि उनके इनिशियल किशोर कुमार से मिलते थे और वो सीखे हुए भी नहीं थे जैसे किशोर कुमार थे,
0: बिल्कुल
1: लेकिन
0: बिल्कुल।
1: उनके गानों में जो रूह थी
0: हाँ
1: वो बहुत ही कम सिंगर्स में मिलती है
0: जी
1: हमारे
0: जी
1: जनरेशन के।
0: बिल्कुल सही।
1: और वो गाना मैं इसके लिए पेश कर रहा हूं क्योंकि इस बार इसका म्यूजिक डायरेक्टर है रूप कुमार राठौड़,
0: ओ
1: जो हासिल के गाने में एक सिंगर थे। इस गाने के गीत लिखे हैं शकील आजमी ने,
0: जी
1: और जैसे मैंने कहा फिल्म जहर, ए बेखबर ए बेखबर।

0: क्या बात है, जहर फिल्म का ये अनमोल गाना हमने याद किया और इसी के साथ आज का ये एपिसोड पूरा हो रहा है। राजीव जी, अपने श्रोताओं से विदा लेते हैं।
1: थैंक यू, नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।
2: अनमोल यादें, रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अनमोल यादें।
3: FM 102.8 पर श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विविध भारती का मुंबई केंद्र। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बज रहे हैं। समय है कार्यक्रम

एक गीत का आइए इस कार्यक्रम के अंतर्गत सुनते हैं फिल्म आजा नचले का ये खूबसूरत सा गीत, जिसे आवाजें दी हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने, रचना है जयदीप सानी और पीयूष मिश्रा की, जिसे स्वरबद्ध किया है सलीम सुलेमान ने। तो पेश है ये खूबसूरत सा नगमा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ये खूबसूरत सा नगमा। ये है विविध भारती का मुंबई केंद्र FM 102.8 पर। रात्रि के 8:05 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे राष्ट्रीय मराठी समाचार, जो कि हमारे मुंबई केंद्र से प्रसारित किया जाएगा।

प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। ये है अनु मलिक का संगीत, जमीर काजमी की रचना, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें फिल्म विजय पथ के लिए।

0: कुमार सानू और अलका याग्निक को आपने सुना। फिल्म का नाम था विजय पथ। गीतकार जमीर काजमी थे और संगीतकार थे अनु मलिक।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा। कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

केकी की आवाज थी, फिल्म का नाम था सॉरी भाई। गीत रचना अमिताभ वर्मा की थी और धुन बनाई थी गौरव दयाल ने। चित्रलोक कार्यक्रम में अब लेते हैं एक अंतराल।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 27 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आँखों में इशारा हो गया।
3: दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे बॉम्बे टॉकीज में कल यानी 25 जुलाई को दोपहर बाद 4 बजे आप सुनेंगे फिल्मी दुनिया के जाने माने संगीतकार दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की गई एक बातचीत। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। और अब चित्रलोक कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों की आवाजें। फिल्म का नाम है धड़कन, इसे समीर ने लिखा है और धुन नदीम श्रवण की।

ये था आज का चित्रलोक कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में CJP के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार पांचवें दिन भी बाधित हुई। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंडकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। गुजरात के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन प्रभावित। चीन में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। और राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
2: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
1: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। साथ ही पेपर लीक के मामलों को लेकर विवादों में रही एजेंसी में किए जा रहे व्यापक बदलावों का हिस्सा भी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि मुलाकात सकारात्मक रही। उन्होंने कहा कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
3: लगभग 2 घंटे चली सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
1: श्री नड्डा ने बताया कि कांग्रेस जनता पार्टी ने 3 मुख्य मांगे रखी और परीक्षाओं के पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए कुछ सुधारों का सुझाव भी दिया। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार कल प्रतिनिधिमंडल के साथ एक और दौर की चर्चा करेगी। इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मानसून सत्र के पहले सप्ताह में कोई भी महत्वपूर्ण विधायी कार्य नहीं हो सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने

0: के सरकार पहले दिन से ही नेट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन कांग्रेस द्वारा रखी गई कुछ शर्तों के कारण इस मुद्दे पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी। पीठासीन अधिकारियों और सरकार की ओर से व्यवस्था बनाए रखने की बार बार अपील के बावजूद विपक्षी सदस्य दोनों सदनों में विरोध प्रदर्शन करते रहे। लगातार हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक अदालत बनाने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के चारों महानगरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सूचित किया है कि मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार अब खोल दिए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंडकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।
2: आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन, और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
1: ये परियोजना प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत बनाई गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य एकीकृत योजना और संबंधित पक्षों के परामर्श के माध्यम से बहुमार्गीय संपर्क और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री परिषद से रवनीत सिंह का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। श्री रवनीत रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बुखारेस्ट में रोमानिया के प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात कर भारत रोमानिया साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सार्थक चर्चा की। इस दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और व्यापार, निवेश, स्वच्छ ऊर्जा, संचार तथा उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत की जानबूझकर पाकिस्तान में बाढ़ लाने की मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में चिनाब नदी में पानी का बहाव इस सप्ताह जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण बढ़ा है। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि सरकार अपने निकटवर्ती क्षेत्रों में हो रहे सभी घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रही है, जिनका उनके राष्ट्रीय हितों पर असर पड़ सकता है, और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा और उसे मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रासंगिक मंचों पर सीमा पार आतंकवाद के प्रभाव के बारे में लगातार बात करता रहा है, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के बारे में। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि भारत आपसी हितों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बांग्लादेश के साथ निरंतर संपर्क में है। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि भारत ने तीस्ता नदी व्यापक प्रबंधन और पुनःस्थापन परियोजना के संदर्भों तथा प्रस्तावित चीन म्यांमार बांग्लादेश आर्थिक गलियारे की रिपोर्टों पर ध्यान दिया है। भारत ने आज नई दिल्ली में आपदा जोखिम शमन पर तीसरी ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की। बैठक का समापन आपदा जोखिम शमन पर ब्रिक्स संयुक्त वक्तव्य को सर्वसम्मति से अपनाने के साथ हुआ। सदस्य देशों ने 2025-28 तक ब्रिक्स आपदा जोखिम शमन कार्य योजना के कार्यान्वयन

0: दिशा निर्देशों को अपनाया है।
1: ब्रिक्स महत्वपूर्ण देशों का समूह है। हम मिलकर ही डिसाइड करते हैं कि किन सारे एरियाज को हम और उस पर ध्यान केंद्रित करें, कहाँ पर हम ज़्यादा एक दूसरे से सहयोग कर सकते हैं। तो एक वर्क प्लान बनाने की बात थी और जो औपचारिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी हमने अडॉप्ट किया।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात के कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी हैं।
2: सभी बाढ़ प्रभावित जिलों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है। नवसारी में आज NDRF, SDRF और भारतीय सेना की संयुक्त टीमों ने 14,000 से अधिक नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। उधर अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अमली और घुमा जैसे जलभराव वाले क्षेत्रों का दौरा किया और स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल के साथ समीक्षा बैठक की। इस बीच भारी जलभराव के कारण आज भी रेल यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कल वर्षा की चेतावनी दी है और राज्य के 7 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में कल बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी कल मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में आज भीषण सड़क दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हो गई। ये दुर्घटना उदयपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सीमा सड़क संगठन मार्ग पर कदुनाला राहुली के पास हुई, जब पहाड़ी से अचानक एक विशाल चट्टान लुढ़क कर वाहन पर गिर गई। घटना के बाद पुलिस, जिला प्रशासन के अधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने बचाव और राहत कार्य शुरू किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। हमारी विशेष श्रृंखला पीपल्स पद्मा आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया से बात करेंगे, जिन्हें इस वर्ष प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चीन के हांगचाओ में ISSF विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की संयम ने आज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में CJP के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार 5वें दिन भी बाधित हुई। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। और निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

किशोर कुमार और आशा भोंसले को अभी आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था जवानी दीवानी। और आइए अब सुनते हैं सचिन देव बर्मन के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी की रचना, आवाज किशोर कुमार की और फिल्म का नाम आराधना।

किशोर कुमार के बाद लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़। फिल्म का नाम है सनी, शब्द आनंद बख्शी के हैं और संगीत राहुल देव बर्मन का है।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध।

किशोर कुमार को आपने सुना, फिल्म का नाम था जॉनी मेरा नाम। इनका साथ दे रही थी उषा खन्ना, बोल इंदिवर के थे और धुन कल्याण जी आनंद जी की थी।

राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में अभी आपने मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत सुना। स्वर लता मंगेशकर का था और फिल्म का नाम था अनामिका। आपके लिए कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, खय्याम साहब का संगीत, जानिसार अख्तर के बोल, आवाज एक बार फिर लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम रजिया सुल्तान।

0: लता मंगेशकर के गाए फिल्म रजिया सुल्तान के इस गीत के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए

0: कैसी बना ये गाना।
1: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
1: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे फिल्मकार की जिसने रुपहले पर्दे पर छेड़ा देशभक्ति का राग।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित निर्माता, निर्देशक, अभिनेता और लेखक मनोज कुमार की।

मनोज कुमार का जन्म 24 जुलाई 1937 को एबटाबाद में हुआ था। ये जगह अब पाकिस्तान में है। उनका वास्तविक नाम है हरी कृष्ण गोस्वामी। जब वो 10 बरस के थे तो देश का बंटवारा हो गया और पूरा परिवार दिल्ली में आ गया और रिफ्यूजीज यानी शरणार्थियों के एक कैंप में पुराने राजेंद्र नगर दिल्ली में रहने लगा। मनोज कुमार ने अपनी शिक्षा दीक्षा दिल्ली में ही पूरी की। बचपन से ही दिलीप कुमार उनके पसंदीदा अभिनेता थे। वो दिलीप कुमार की कॉपी किया करते थे अपने कॉलेज के दिनों में। शुरुआती दिनों में मनोज कुमार ने कुछ छोटे मोटे काम किए, यहां तक कि उन्होंने सिलाई मशीन के सेल्समैन के तौर पर भी कुछ दिन काम किया। बाद में अभिनेता बनने का सपना लेकर मनोज कुमार मुंबई आ गए और यहां उन्होंने कुछ छोटी फिल्मों से की अपनी शुरुआत, जैसे सन 1957 में आई थी फिल्म फैशन।

तकरीबन 5 बरस बाद विजय भट्ट की फिल्म हरियाली और रास्ता के जरिए मनोज कुमार को मिली अपनी पहली बड़ी कामयाबी। इस फिल्म में उनकी नायिका थी माला सिन्हा।

0: था।
1: सन 1965 में ही विचार आया शहीद भगत सिंह पर फिल्म बनाने का। फिल्म शहीद का निर्माण बहुत सारे संघर्षों से घिर गया था, लेकिन मनोज कुमार ने ठान लिया था कि ये फिल्म तो बनकर रहेगी और शहीद भगत सिंह के जीवन पर सबसे प्रामाणिक फिल्म यही है जिसमें मनोज कुमार शामिल थे। इस फिल्म में प्रेम चोपड़ा भी नजर आए। फिल्म के गीतकार और संगीतकार थे प्रेम धवन।

मनोज कुमार के करियर के दो अलग अलग पहलू हैं। एक वो पहलू है जहां वो रूमानी नायक के तौर पर कई फिल्मों में नजर आए, और दूसरा पहलू है भारत कुमार वाला पहलू, जहां उन्होंने देशभक्ति और सरोकार वाला सिनेमा बनाया। तो चलिए पहले बतौर चॉकलेटी हीरो मनोज कुमार की फिल्मों की कुछ झलक यानी कुछ गाने सुन लिए जाएं। फिल्म पत्थर के सनम।

0: जब फिल्म शहीद को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को दिखाया गया, तब ये फिल्म उन्हें बहुत पसंद आई और उन्होंने मनोज कुमार की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनसे कहा, क्या मेरी नारी जय जवान जय किसान पर फिल्म नहीं बन सकती? मनोज कुमार ने दिल्ली से लौटते हुए कुछ रजिस्टर खरीदे और कुछ नए पेन। दिल्ली से मुंबई तक के सफर में फिल्म उपकार की कहानी तैयार हो चुकी थी और इस तरह सन 1967 में आई रुपहले पर्दे की एक नायाब बेमिसाल फिल्म उपकार।
1: जब

उपकार के इस गाने की एक दिलचस्प कहानी है। गुलशन बावरा रेलवे में क्लर्क हुआ करते थे। रेल गोदाम में पंजाब से आती थीं गेहूं की बोरियां। जब गेहूं की इतनी सारी बोरियां उतरा करती तो गुलशन बावरा के कवि मन में एक पंक्ति कौन थी, मेरे देश की धरती सोना उगले। बरसों बरस ये पंक्ति उनकी डायरी में बनी रही। बाद में मनोज कुमार ने इसे फिल्म उपकार में शामिल किया। सन 1970 मनोज कुमार अपनी दूसरी फिल्म लेकर आए, पूरब और पश्चिम। ये फिल्म परंपरा और पश्चिमी संस्कृति के टकराव की कहानी थी। इस फिल्म की चारों तरफ बड़ी तारीफ हुई और ये गाना जैसे भारत के गौरव का गान बन गया।

सन 1972 में मनोज कुमार नजर आए फिल्म बेईमान में। इसी साल मनोज कुमार ने अपने प्रोडक्शन से अगली फिल्म प्रस्तुत की जिसका नाम था शोर।

फिल्म शूर के गाने बेहद मकबूल हुए। सन 1974 मनोज कुमार ने एक ऐसी फिल्म बनाई, आजादी के बाद बनते हुए भारत के सपनों से थोड़े से मोहभंग की कहानी थी। एक ऐसी फिल्म जिसने बताया कि हम सब अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन देश में हैं कुछ समस्याएं जिन्हें निपटाना जरूरी है। यह फिल्म थी रोटी कपड़ा और मकान। फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में मनोज कुमार के साथ नजर आई जीनत अमान।

इसके बाद मनोज कुमार नजर आए फिल्म 10 नंबरी में। मनोज कुमार दिलीप कुमार के हमेशा से जबरदस्त फैन रहे हैं। दिलीप कुमार के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका उन्हें मिला सन 1981 में अपनी फिल्म क्रांति के जरिए। क्रांति

0: सन 1989 में मनोज कुमार ने बनाई फिल्म क्लर्क और सन 1995 में मैदानी जंग। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और लेखक मनोज कुमार पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपने पन का गांव।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत बस कुछ ही पलों के बाद।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं वीको वजदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर छाया गीत लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। हर इंसान का किसी न किसी वस्तु से भी गाढ़ा प्रेम होता है। उस वस्तु के लिए वो किसी भी तरह का जोखिम उठाने को तैयार रहता है, यहाँ तक कि कई बार अपनों से भी ज्यादा उस वस्तु विशेष का ख्याल रखा जाता है। पर अगर वो खो जाए तो

वो सामान जो हमें सबसे प्यारा हो हमसे दूर हो जाए, खो जाए, तो मानो हर रिश्ते नाते सुख सुविधा के बाद भी हमें चैन कहाँ। उसकी खोज में खुद तो लगते ही हैं, अपनों को भी लगा देते हैं।

0: भाई ये तो आज तक कोई पता नहीं लगा पाया कि संभाल कर रखी चीजें ही सबसे ज्यादा गुम क्यों होती हैं, और ये गुम हुई चीजें आखिर जाती कहाँ हैं? क्या वो कहीं छुपकर हमें देखती रहती हैं, हमारी परीक्षा लेती हैं कि हम उनकी परवाह करते भी हैं या नहीं?
1: तो

कई बार हमारे सामने दुनिया जहान की चीजें रखी होती हैं, पर मन तो वहीं अटका है उस गुम हुई चीज के साथ। सोते जागते उठते बैठते बस एक ही ख्याल कि आखिर वो गई तो गई कहाँ।

आप सुन रहे हैं छाया गीत। क्या गुम हुई चीजें भी मेले में गुम बच्चे की तरह घर लौटने को बेताब रहती होगी? क्या वो भी मिलने वाले को अपने मालिक का अता पता बताती होगी? फिर कुछ इस तरह होती होगी घोषणा।

सारी चीजें जैसे ही किसी को मिलती है उनकी खुशी भी देखते ही बनती है। शायद उन्हें भी याद आ जाती हैं अपनी गुम हुई चीजें, तभी तो वो झूम कर बताने लगते हैं मिली हुई चीज का हाल, खोजने लगते हैं उनका पता जिसकी है ये चीज।

एक बार जो गुम हुई चीज मिल जाए तो यूं लगता है जैसे सारी उम्मीदें हो सकती हैं पूरी। इस जहान में कुछ भी नहीं है नामुमकिन, बस शिद्दत से खोजा जाए तो मिल सकता है कुछ भी। दिल का चैन, खुशियां, सुख, मन की शांति, और दिल कह उठता है।